FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में रिले होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद 6:05 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम। समाचारों की प्रतीक्षा की
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार

चिंतन। बालगंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक जिंदगी सचमुच।

0: एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नखमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनिएगा अंजलि, लेखक है अरगवान अब्बी। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा। शाम 7 बजे जयबाला। 7:45 पर गुलदस्ता।

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजकर तीस मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा पर।

10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। ये था लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को वितत्वाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद्य वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंकाधिपति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पिना की वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफू प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रिमाना के आंद्रे आमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालू स्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है।

उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि इनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन। राग है जौनपुरी।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गजतत्वाद्य, गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह, आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जो अपनी शोखी के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है श्यामा। सन 1954 फिल्म भाई भाई, सन 1956 फिल्म भाई भाई, श्यामा की चंद रंग में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में है।

भाई भाई फिल्म का गाना गीता रॉय की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत मदन मोहन का था। एक बार फिर आ रही है गीता रॉय की ही आवाज। मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर, फिल्म आर पार।

भाभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था। विविध भारती से आप बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

शारदा फिल्म का गीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और सी रामचंद्र की तरसी आशा भोसले की आवाज। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 7:18 हो चुके हैं। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों के सहारे आगे बढ़ते हैं।

शरद फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था, एसएच बिहारी के बोल थे, संगीत खुद हेमंत कुमार का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना घर फिल्म का गाना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, प्रेम धवन के बोल, रवि की तर्ज़।

0: इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन विविध भारती से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में सुनिए हम हैं राही प्यार के।
3: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा गुड्डू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
7: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना।
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: RBI कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
12: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: मैं हूँ पठान, खाने वाले का।

खाएगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड, मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का

मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

फिल्म का नाम था भाई भाई, राजेंद्र कृष्ण की बोलती, संगीत मदन मोहन का था।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

सावन भादो फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत सोनिक उमी का था। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायूनी का नगमा, नौशाद के बोल और फिल्म का नाम दिल दिया कर दिया।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में रिले होंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव

0: उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन

0: फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार

0: And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। ये वक्त है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

0: मौसम ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, पतझड़ में सब्र रखना, बरसात में यादों में भीगना, सर्द हवाओं में खुद को संभालना और बहारों में मुस्कुराना। और ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ एक नया दिन आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। नए दिन में नमस्कार उदयपुर के नए अंक के साथ आज मैं हूँ रश्मि और मेरे साथ हैं स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। और मीनाक्षी, आज है डिजिटल और फन फ्राइडे, तो आज डे स्टार्ट के अंतर्गत कुछ स्थानीय सूचनाएं होंगी। साथ ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज सुबह 9:10 पर हमारे श्रोताओं को एक विशेष बातचीत भी सुनवाएंगे और स्मार्ट लिविंग के अंतर्गत बात करेंगे स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग।
1: फिल्म में उनका जिक्र भी होगा, तो ये सब रहेगा आज के नमस्कार उदयपुर में। फिलहाल शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

0: चलिए, तो खूबसूरती से जीने के लिए कुछ लाइव अपडेट्स हमारी जिंदगी में, हमें हमेशा अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो आज क्या कुछ खास है मीनाक्षी?
1: बिल्कुल रश्मि, जैसे तुमने गीत सुनवाया ना कि दुनिया में, मैं कहना चाहूंगी कि महान ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है जो एक जन्म में ऐसे उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं, वीरता का परिचय देते हैं कि इतिहास रच देते हैं और जन्म को सार्थक बना देते हैं। और उन्हीं में शुमार होता है मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म और उनका नाम। उनकी 486वीं जयंती मेवाड़ में शौर्य, स्वाभिमान, सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाई जा रही है, जहां कल हकीम खां सूरी और महाराणा प्रताप की मित्रता को कविताओं और गीतों के जरिए याद किया गया, तो वहीं गोगुंदा स्थित ऐतिहासिक मायरा की गुफा में प्रताप से जुड़े इतिहास को नमन किया गया। 17 जून को भव्य रूप में मुख्य आयोजन होगा, जिसके लिए गांधी ग्राउंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और 10 जून से विविध कार्यक्रम शहर भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भुवाणा चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की आरती कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गणगौर घाट पर 486 दीप प्रज्वलित किए गए। गोगुंदा स्थित उनकी राजतिलक भूमि पर प्रतिमा का दुग्धाभिषेक और माल्यार्पण कर उन्हें त्याग और उनके शौर्य को नमन किया गया। इसी क्रम में आज राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतिमा का पूजन होगा। गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधाय स्मारक पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही रेती स्टैंड स्थित महान योद्धा और नायक राणा पुंजा को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। राणा पुंजा तो जानते ही होंगे आप, गुरिल्ला युद्ध में निपुण राणा पुंजा के अद्भुत नेतृत्व में भील तीरंदाजों की विशाल सेना ने हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप का साथ देकर मेवाड़ की रक्षा की।
0: बिल्कुल, और कुछ और अपडेट्स की बात करें मीनाक्षी, तो रिनीट यूजी 2026 में शामिल होने जा रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्वयं चयनित स्क्राइब की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये व्यवस्था न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। अभ्यर्थी 12 जून यानी आज रात्रि 11:50 तक स्क्राइब की डिटेल्स अपलोड कर सकेंगे।
1: बिल्कुल, और आज से यानी 12 जून से 15 जुलाई तक शहर में शहरी सेवा शिविर लग रहे हैं, जिनमें विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण होगा। वार्ड 1, 2, 3 और 80 के लिए निगम परिसर में शिविर लगाए जाएंगे और विशेष शिविर UDA में भी लगेंगे।
0: और इसी के साथ बात करें, कार, बाइक सहित अन्य वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अब बिना OTP के जारी नहीं होगा। NIC ने 9 जून से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत वाहन सॉफ्टवेयर में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पहले किसी भी मोबाइल नंबर पर OTP लेकर PUCC जारी हो जाती थी, अब केवल वाहन डेटाबेस में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगा और OTP सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होगा।
1: और अब बात मौसम की कर ली जाए रश्मि, तो झुलसाने वाली गर्मी से परेशान उदयपुर वासियों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है, हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है और 15 जून तक प्री मानसून के आगमन के भी आसार है।
0: बिल्कुल, देखिए इसी के कारण तापमान भी थोड़ा सा कम हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 27.5 डिग्री सेल्सियस।

0: तो चलिए, अगर फ़लसफ़ा ज़िंदगी का सीखना हो तो आपको स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और आज स्मार्ट लिविंग के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग।
1: बिल्कुल रश्मि, तो देखो आज की दुनिया में स्मार्टफोन चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। एक समय था जब लोगों के पास ना जो फ़ोन हुआ करते थे उसमें दो तरह की ही मुख्य सुविधाएं हुआ करती थी, एक कॉल करने की और दूसरी मैसेज भेजने की। और अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएँ मिलती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहद ही आसान बनाती हैं, और आप में से और हम में से अधिकतर लोग स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल, हम स्मार्टफोन का यूज़ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो अगर पूरे दिन में एक बार अगर मैं सोशल मीडिया पर चक्कर लगाने की सोचती हूं तो मेरा एक घंटा बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि उस स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज़ करें। आप शिक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएँ उसके अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं, ई पुस्तकों को आप काम में ले सकते हैं, ज्ञानवर्धक सामग्री आपको मिल सकती है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कैलेंडर है, रिमाइंडर है, नोट्स एप्लीकेशंस हैं। साथ ही परिवार और मित्रों से जुड़े रहने के लिए संचार माध्यमों का हमें संतुलित उपयोग करना चाहिए। उसी के साथ आजकल देख लीजिए, डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का भी सुरक्षित तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, कॉल और चैटिंग के अलावा वीडियो देखने से लेकर गेम खेलने तक हर तरह की सुविधा आजकल

0: स्मार्टफोन में मिलती है, लेकिन स्मार्टफोन बस यहीं तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे कमाल के फीचर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि हम इन्हें ऑटोमेटिक साइलेंट मोड पर भी रख सकते हैं। अगर आप सिनेमा हॉल या लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आपके फोन आप जो है साइलेंट मोड पर चलाया जा सकता है, और अगर आप घर पर अपने फोन को हमेशा अनलॉक रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी सिक्योरिटी लोकेशन की सेटिंग में जाकर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके हिसाब से मैसेज की सेटिंग कर सकते हैं, ताकि अगर ड्राइविंग के दौरान आपको कोई कॉल करे तो उसे रिप्लाई मिल जाएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और वो डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा देखो, आप फोन के कैमरे और एप्स का उपयोग करके बिल, रसीदें, जरूरी दस्तावेज पीडीएफ में हम बदल सकते हैं डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करके, और अपने सभी महत्वपूर्ण कागजात जैसे आधार, पैन कार्ड डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एप्स का उपयोग करके टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, और टाइपिंग की बजाय बोलकर हम तेजी से उसमें भी नोट्स बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं मीनाक्षी, तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, योग और व्यायाम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। उसके अलावा आप ट्राई की D&D सेवा एक्टिव रख सकते हैं।

0: सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ऐप्स का उपयोग करके टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, और टाइपिंग की बजाय बोलकर हम तेजी से उसमें भी नोट्स बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं मीनाक्षी, तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, योग और व्यायाम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। उसके अलावा आप ट्राई की D&D सेवा एक्टिव रख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स के लिए मैसेज बॉक्स में जाएं और बड़े अक्षरों में लिखें फुली ब्लॉक, लिखकर 1909 पर भेज दें। इसके बाद कमर्शियल स्पैम कॉल आने बंद हो जाएंगे और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डू नॉट डिस्टर्ब का बटन भी होता है। इसी के साथ आप व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड जो है वो बंद कर सकते हैं, ताकि जितनी भी आपके पास पिक्चर्स आती है या वीडियोस आती हैं वो अपने आप डाउनलोड नहीं हो। उसी के अलावा आपने जैसे के लिए बैंकिंग के लिए बताया, तो अपने मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स और गूगल पे या फ़ोन पे जैसे पेमेंट ऐप्स पर फिंगरप्रिंट्स या फेस लॉक आप अवश्य लगाएं, ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सके।
0: और देखो, हम मैप्स के जरिए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, लाइव ट्रैफिक अपडेट्स भी हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम फोन के जरिए शॉपिंग तो करते ही हैं, है ना, लेकिन हम कन्वेंस की बुकिंग हुई या टिकट्स की बुकिंग, चाहे हमें थिएटर्स की बुकिंग करनी हो या टूर की, होटल्स की करनी हो, हम हर तरह की बुकिंग जो अपने फोन के माध्यम से कर पाते हैं। इसके अलावा अपने कदमों के हम कितने स्टेप्स चले हैं, नींद को ट्रैक करने के लिए फिट और हेल्थ उपयोग का ऑप्शन लेकर हम आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर्स से भी ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और हम घर को भी स्मार्ट बना सकते हैं। देखो तो आजकल हर चीज हम फोन से कंट्रोल कर पाते हैं, फोन चलाना हो, एसी चलाना हो, पंखा चलाना हो, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखते हो अगर घर में आजकल सिक्योरिटी के हिसाब से या शॉप्स पर कैमरे लगाए जाते हैं, तो वो भी लाइव आपको आपके फोन में पिक्चर्स और वीडियोस दिखते रहते हैं।
1: बिल्कुल, आपने घर की बात की, तो खासकर जब पानी डुल रहा होता है तो मोटर बंद करने के लिए भी आजकल स्मार्टफोन का यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट की वजह से आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। प्लेटफॉर्म तक आसान पहुँच के कारण अब जुआ खेलना लोगों के लिए आम बात हो गई है। तो इस तरह की चीज़ों में संलग्न ना हो, स्मार्टफोन को स्मार्टली आप यूज़ करें। स्मार्टफोन तभी वास्तव में स्मार्ट है जब आप उसका उपयोग समझदारी, संयम और सही उद्देश्य से करेंगे।

0: मीनाक्षी, मुझे लगता है स्मार्टफोन का एक नुकसान ये भी है कि हम किसी अपने से बहुत सारी बातें अपनी साझा कर लेते हैं और कई बार किसी के बारे में बहुत सारा जान लेते हैं ना, तो हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है।
1: लेकिन हम ब्रेकअप नहीं, हम पैचअप करने में यकीन करते हैं, है ना। तो अब देखो, फिल्मी शुक्रवार की बात करते हैं और आज खास जिन फिल्मों की बात होगी वो आर्थिक घटना और वित्तीय घोटालों पर आधारित हिंदी फिल्में रही हैं जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। और इन फिल्मों में शेयर बाजार की हलचल से लेकर भ्रष्टाचार व्यावसायिक संघर्षों को बखूबी दर्शाया गया, दिखाया गया, जिनमें प्रमुख फिल्में जो रहती हैं बाजार 2018 में जो रिलीज हुई, सैफ अली खान अभिनीत यह फिल्म मुंबई के हाइट स्टेक शेयर बाजार और ट्रेंडिंग को दुनिया पर उसकी आधारित है, और इसमें पैसे की भूख, सत्ता के खेल और जोखिम भरी व्यापारिक रणनीतियों को दिखाया गया है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ रॉकेट सिंह फिल्म है जो कि सेल्समैन ऑफ द ईयर, इसका विषय रहा मार्केटिंग, बिक्री और व्यावसायिक नैतिकता के ऊपर। फिल्म थी ग्राहक विश्वास और ईमानदारी को सफलता का आधार बताती है ये फिल्म।
1: इसके अलावा स्कैम जो 1992 में रिलीज हुई, द हर्षद मेहता स्टोरी, 2020 की ये फिल्म 1992 के स्कैम पर आधारित, हालांकि ये एक वेब सीरीज है, लेकिन 1990 के दशक के सबसे बड़े भारतीय शेयर बाजार घोटाले को समझने के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हर्षद मेहता के उदय और पतन की सच्ची कहानी है। इसके बाद निर्देशक तुषार हीरा नंदानी ने स्कैम 2 भी बनाई। 2003 द तेलगी स्टोरी, ये फिल्म भारत के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर आधारित है।
0: इसी के साथ कॉरपोरेट फिल्म जो है वो कॉरपोरेट जगत, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और नैतिक चुनौतियों को दर्शाती है। व्यापार में लाभ और नैतिकता के बीच संतुलन पर ये फिल्म प्रश्न उठाती है।
1: और हर्षद मेहता घोटाले से ही जुड़ी एक और फिल्म आई थी द बिग बुल 2021 में, ये अभिषेक बच्चन की फिल्म वित्तीय घोटालों और स्टॉक मार्केट की हेराफेरी से प्रेरित रही।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ श्रीकांत फिल्म आई जो कि श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित थी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच सफलता की कहानी को दिखाया गया।
1: वन इडियट, हिसाब बराबर 2013 और 2025 की ये फिल्में वित्तीय साक्षरता और घोटालों के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष और आर्थिक प्रबंधन को रोचक तरीके से पेश करती हैं। इसके अलावा 2018 की रेड और इसके बाद इसी की सीक्वल आई थी रेड 2 2025 में। ये फिल्म 1980 के दशक में लखनऊ में हुए वास्तविक और बेहद हाई प्रोफाइल आयकर छापे पर आधारित थी जो पहली पार्ट थी, और इसकी जो अगली कड़ी आई IRS अधिकारी अमय पटनायक एक और बड़े आर्थिक अपराध का इसमें पर्दाफाश करते हैं।
0: बिल्कुल मीनाक्षी। और देखिए, केवल नए दौर में नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों में भी हम देखें तो दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, नया दौर, प्यासा, काला बाजार जैसी, गोदान जैसी फिल्में हैं जिसमें किसानों के जीवन के बारे में बताया गया और कर्ज और सामाजिक और आर्थिक शोषण के बारे में बताया गया। इसी के साथ अब लास्ट में हम जिक्र करते हैं गुरु फिल्म का जो कि भारतीय उद्योग जगत और उद्यमिता पर आधारित थी। बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की एक कहानी है, तो इसी का गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: चलता है चलता। बिल्कुल मेहनत से कमाया जाता है पैसा। और अब बात करें हम कुछ न्यू रिलीजेस की, तो मीनाक्षी क्या कहना चाहूंगी?
1: बिल्कुल, जल्दी से अपने श्रोताओं को अपडेट दे देते हैं कि थिएटर में आज जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, गवर्नर मनोज वाजपेयी अदा शर्मा स्टारर थ्रिलर फिल्म है, हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म, और मैं वापस आऊंगा दिलजीत दोसांझ की इमोशनल ड्रामा फिल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
0: बिल्कुल, इसी के साथ है जवानी तो इश्क होना है ये फिल्म भी, और उसके अलावा भारत भाग्य विधाता कंगना रानौत की जो फिल्म है ये 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अस्पताल कर्मियों के साहस पर आधारित ये फिल्म है जो कि आज ही रिलीज होने वाली है। और अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो भूत बंगला जो कि अक्षय कुमार की हॉरर फिल्म है जो कि आज नेटफ्लिक्स पर यानी 12 जून को रिलीज होने वाली है।
1: सूर्या और त्रिशा कृष्णन की कुरुप्पु फिल्म फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, तमिल के साथ साथ हिंदी डब वर्जन में भी स्ट्रीम होगी।
0: बिल्कुल, तो ये थी वो फिल्में जो कि अब रिलीज होने वाली है। फिलहाल हमने नई फिल्मों की बात की है, तो क्यों ना हमारे श्रोताओं को भारत भाग्य विधाता इसी फिल्म का गीत सुनाते हैं। और इस गीत के उस पार हमारे श्रोताओं को लिए चलेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सुबह 9:10 पर।

प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र AI सलाहकार सेवा शुरू की गई।

0: प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का

0: तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली, बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थी। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी उदयपुर और कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर के दूसरे भाग के साथ एक बार फिर मैं मीनाक्षी और मेरे साथ
3: मैं रश्मित। और मीनाक्षी, जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि आज हम सभी ने राजस्थान की मरू कोकिला यानी गौरी देवी जी को खो दिया, तो आकाशवाणी उदयपुर की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि हम उन्हें देते हैं। और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी, तो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या से सुनवा रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
4: श्रोताओं, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए

0: हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या। आप बाल अधिकार विशेषज्ञ हैं, पूर्व सदस्य हैं राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार के अंतर्गत। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: और डॉक्टर शैलेंद्र, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की हम बात कर रहे हैं, और अमूमन हम ये मानते हैं कि किसी दिवस को मनाने का एक उद्देश्य ये होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे महत्व निहित होते हैं, तो इस दिन को मनाने का महत्व कितना है और वर्तमान संदर्भ में इस दिवस को मनाने की प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है?
1: देखिए, सिर्फ राजस्थान और भारत ही नहीं, ये पूरा जैसे हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे है, तो इसको हमारे ILO ने वर्ष 2002 से मनाना शुरू किया था। क्योंकि चाहे वो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर रही हो, चाहे कोई भी युद्ध रहे हो, हमेशा सबसे अधिक प्रभावित कोई होता है उससे, तो बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों में भी अलग अलग स्थितियाँ ये हुई कि स्थितियाँ जब नॉर्मलाइज भी होने लगी, लेकिन फिर भी बच्चे और महिलाएँ एक ऐसा वर्ग सदैव रहा है कि जो कि इनके शोषण और हिंसा का शिकार ज़्यादा रहा है। तो 2002 में जब इस पर चिंतन हो रहा होगा ILO में, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसको भी रखा कि बाल श्रम से बच्चे आज भी पीड़ित हैं, विशेष रूप से उन देशों के जो देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, विकासशील हैं, वहाँ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इन सारे सब देश को समझते हुए डेडिकेटेड 12 जून को हर साल इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरे विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर इस बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कैसे प्रयास करें, उसको समर्पित ये दिन रहता है।
0: डॉक्टर शैलेंद्र, अगर हम बात करें कि जो हमने भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये बात जानने की कोशिश की, और आपने भी बताया कि हम विकासशील देश की श्रेणी में और धीरे धीरे हम विकसित देश की श्रेणी में आने लगे, गिने जाने लगे, लेकिन जब हम देखते हैं बाल श्रम के आधार को हम देखते हैं, तो बाल श्रम को भारत जैसे देशों में, या जहाँ यूँ कहें कि जहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पर बाल श्रम को श्रम नहीं मानकर हेल्पिंग हैंड की तरह देखा जाता है। तो क्या, अगर इस दिवस को हम मना रहे हैं, तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि किन मूल अधिकारों का बच्चों का हनन हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, मैं तो कहूँगा कि हम जितने भी 54 आर्टिकल्स UNCRC के हैं, उसको मुख्य रूप से चार भागों में हम बांटते हैं। तो चाहे वो सर्वाइवल राइट जीने का अधिकार हो, विकास का अधिकार डेवलपमेंट राइट हो, चाहे उसकी सुरक्षा का अधिकार प्रोटेक्शन राइट हो, लास्ट आता है पार्टिसिपेशन राइट, मतलब सहभागिता का अधिकार। ये चारों ही मुख्य अधिकारों का हनन होता है जब कोई बच्चा बाल श्रम की दलदल में अपने बचपन की आहुति देता है। आपने दो बातें बोली हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिस पर कॉमन लेमैन के अब ये मानना रहता है कि साहब ये काम ही तो कर रहा है, ये तो एक हेल्पिंग हैंड है। तो बिल्कुल, अगर आप कानून की भाषा को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, पहली बात तो 14 साल से कम का यदि कोई बच्चा है और वो किसी भी तरह काम करता है, वो बिल्कुल वर्जित है। लेकिन यदि उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम की श्रेणी में यदि वो है, और यदि वो ऐसा कोई काम करता है जो हैजार्डस वर्क नहीं है, जोखिम भरा काम नहीं है, उसकी जान जोखिम में नहीं है, और सेकंड वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है कि ठीक है, उसका एजुकेशन कंटिन्यू चलता है, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं और कुछ समय माता पिता का हाथ बटा रहा है, पारिवारिक उद्यम में सहयोग कर रहा है, किसी और के वहाँ जाके काम नहीं कर रहा, इस तरह के कामों को उसमें पूरा एक थर्ड ए हमारा अनुलग एनिक्जर है, उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। यदि उस श्रेणी में वो बच्चा आता है तो उसको हम हेल्पिंग हैंड मानेंगे कि ठीक है, अपना बच्चा पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम लोग कहते हैं हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आज आप देखिए हम उसको प्रमोट भी करते हैं इस जगहों पर, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम पर यदि उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक जाए, उस बच्चे को पढ़ाई, उसका राइट टू एजुकेशन भी उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए, तो यदि इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बच्चा कोई काम में सहयोग करता है तो वो हेल्पिंग हैंड है, नहीं तो हर वो बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में माना जाता है।
0: डॉक्टर पंड्या, अगर हम भारत देश के संदर्भ में देखें तो बाल श्रम का मुख्य कारण यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं, और अगर बात करें जब हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या विगत आप इतने वर्षों से बाल श्रम के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है और काफ़ी इस क्षेत्र में कार्य किया, तो क्या चुनौतियाँ आप मुख्य रूप से देख रहे हैं?
1: देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि बातचीत करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गरीबी बड़ा मुद्दा नहीं है, जॉब मिलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या उसकी कोई वल्नरेबल सिचुएशन है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है ये जो ट्रैफिकर्स और जो इस तरह के लोग हैं, इन बच्चों को टारगेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आप कभी इस भुलावे में ना रहें कि एक जो बच्चा चाइल्ड लेबर पे है, काम करता है, वो बहुत ज़बरदस्त कोई इनकम करके अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा होगा। कुछ समय पहले एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में यदि मैं 100 का सैंपल आपको बताऊं तो 100 बच्चों को यदि चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई करके उनको पता लगाया गया कि वो कितने बच्चे ऐसे हैं 100 में से कि जो अपने घर पर कोई अच्छा आर्थिक सहयोग करते हैं, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे 64% बच्चे उसमें ऐसे निकले जो घर पर एक भी रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। मतलब ये अहमदाबाद, सूरत, पूना या जहाँ पर भी बच्चा है, वो बच्चा रहता है, काम करता है, छोटा बड़ा कोई चाइनीज मोबाइल ले आएगा या कोई गुटखा या कुछ ऐसा खाने की आदत लग जाएगी, या उसके स्वयं पर वो छोटा बड़ा खर्चा करेगा, और मैक्सिमम वो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। रिमेनिंग जो बच्चे हैं उसमें भी दो तरह के बच्चे हैं, जो 14 या 12% का कोई डेटा था वो बच्चे वो हैं

0: जो डेफिनेटली घर पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर मासिक नहीं करते हैं, वो 6 महीने में 7 महीने में एक बार जब वार त्यौहार आते हैं, चाहे होली दिवाली ईद पर अपने घर आते हैं, तो एक मुश्त पैसा देते हैं। लेकिन एक मुश्त पैसा भी वो कितना देते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये अधिकतम एवरेज। अब जो रिमेनिंग बच्चे बचते हैं, हाँ वो नियमित हर महीने घर पर पैसा देते हैं, जो 10-12% बच्चे बचे हैं, लेकिन वो भी नियमित कितना दे रहे हैं आपको यकीन नहीं होगा। एवरेज यदि निकला जाए उनका, तो वो भी जो पैसा निकल कर आया वो 6 से 7 हज़ार रुपये, 6,800 के लगभग का फिगर था। तो आप देखिए, एक बच्चा जो 6,000 रुपये घर पर दे रहा है, वो भी इन सब बच्चों के अंदर सिर्फ 10 या 12% बच्चे ही हैं, बाकी तो घर पर सहयोग ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी एक वैसी बात है कि गरीबी के कारण या किसी मजबूरी के कारण वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीयर प्रेशर काम करता है, इनको मिसगाइड किया जाता है, ये सस्ती लेबर है, इनका कोई वर्किंग आवर नहीं होता। एक छोटे बच्चे को रात को 12 बजे भी ढाबे पर उठाया जाता है, मारा पीटा जाता है, एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, जहाँ आपके और मेरे जैसे शायद लोग होंगे तो विरोध करें कि सर मुझे मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, मेरा वर्किंग आवर क्या होगा। ये छोटे बच्चे उस बात का विरोध नहीं करते और उसी का लाभ उठाते हैं हमारे ट्रैफिकर्स। तो कहीं पर भी मैं श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनको देखकर इस बुलावे में ना रहे कि ये कोई मजबूरी का शिकार है। हाँ, वो मजबूरी का शिकार है, तो कौन सी, इन ट्रैफिकर्स के टारगेट किए जाने की।
1: डॉक्टर पंड्या, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए और जिन आंकड़ों पर हम बात भी कर रहे हैं, अगर उन आंकड़ों को देखें तो बाल श्रम से इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और जो शैक्षणिक अवस्था है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे गाँव में रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है हमारी सरकार की, आज वो बच्चा जितना वहाँ से पैसा कमाता है उससे ज़्यादा ही पैसा वो अर्न करेगा। विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ, इतनी बढ़िया स्कीम चल रही हैं, चाहे हमारी पालनहार योजना हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, हर वल्नरेबल कैटेगरी के करीब 10 कैटेगरी के बच्चे कवरअप होते हैं, तो उस बच्चे को उतना आर्थिक लाभ मिल सकता है जितना शायद उसको काम करके भी ना मिले। तो पहली बात तो ये, वो जो काम करने जा रहा है उससे उसकी एजुकेशन प्रभावित हुई, अब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जीवन भर बच्चे को इसी लेबर वर्क में रहना है, तो सबसे पहला प्रभाव तो मानता हूँ कि जो बच्चा आज लेबर है वो जीवन भर अब लेबर ही रहेगा, अब संभावना नहीं कुछ वो और कर पाए। दूसरा, जो इनको खान पान मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो उस जगह नहीं मिल पाते। बचा खुचा खाना, यदि होटल में काम कर रहे तो लास्ट की बचा हुआ कुछ होगा वो इनको मिलेगा, तो जो उनको न्यूट्रिशंस, मिनरल्स या विटामिन मिलने चाहिए वो बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाते। ऐसे बच्चे आप बहुत जल्दी आप देखते भी होंगे, किसी भी ढाबे पर जो बच्चा काम करता हो, पतला दुबला से होगा, एक कॉमन नाम होगा उसका छोटू, वो छोटू हर एक दुकान पर आपको जब काम करता हो मिलेगा, वो कमज़ोर होगा, दुबला पतला होगा, उसने खाना कब खाया पूछोगे तो वो एक ही टाइम खाना खाता है, रात को जब सब चीज़ें वाइंड अप होती हैं, या दिन में जब उनको आधे घंटे का बीच में रेस्टोरेंट पर या किसी फैक्ट्री में जॉब का ब्रेक होता है। तो इनका शारीरिक विकास भी रुकता है, मानसिक विकास भी रुकता है, किस तरीके से रुकता है, इनके साथ मार पिटाई भी होती है। कॉमन शायद वर्कर के साथ जितना मार पिटाई या अन्य काम नहीं करवाए जाते, उतने हमारे चाइल्ड लेबर से करवाए जाते हैं। वो बच्चा उस मालिक के कई बार पैर भी दबाता है, घर के कामों में भी सपोर्ट करता है। जो बड़े लेबरर्स वहाँ पर काम करते हैं, कई बार वो भी शोषण करते हैं कि छोटा बच्चा ही हमारा भी सहयोग करेगा। तो ये मार का भी सामना करता है, गालियों का भी सामना करता है, शारीरिक और मानसिक तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ में आर्थिक और भविष्य की दृष्टि से भी इसके भविष्य का शोषण उसी उम्र में हो जाता है, ताकि बच्चा अब जीवन भर इसी दलदल में झगड़ा रहेगा।
1: डॉक्टर पंडे, अगर हम बाल श्रम की बात करें तो बाल श्रम और स्कूल छोड़ने की जो समस्या है, इनके बीच के आप अंतर संबंध को भी समझाएं, क्योंकि सरकारों द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ मिड डे मील के तहत उन्हें भोजन भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये बाल श्रम पनप रहा है, या यूँ कहें इनके आंकड़ों में वृद्धि जो हुई थी हालांकि अब कंट्रोल में आने की स्थिति में, इस पर क्या विचार है आपके?
0: देखिए, अगर हम CLPR हमारा जो एक्ट है बाल श्रम के ऊपर, जो हमारा कानून बना हुआ है, उस कानून की परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है वो चाइल्ड लेबर है, मतलब आउट ऑफ स्कूल बच्चा चाइल्ड लेबर की कैटेगरी माना जाएगा एज पर दिस एक्ट। दूसरी बात ये कि ये बच्चे स्कूल में इतनी सुविधा मिलती है, जैसा आपने कहा कि जब मिड डे मील भी मिलता है, सब कुछ बढ़िया, बच्चे छोड़ क्यों रहे हैं स्कूल? तो मैंने आपको बताया पहले भी, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि ये सारे वो बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर, जैसे रिसेंट आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पहले तो हमने कई सारे रेड एंड रेस्क्यूज किए, अभी रिसेंट महीना भर भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग सूरत से 90+ बच्चों को मुक्त करवा के लेकर आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चे अपने उदयपुर के ही थे, बाकी बच्चे आसपास, 70 बच्चे उदयपुर के थे। उन सारे बच्चों को जब पूछा गया कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही स्कूल में पढ़ने की, लिखने की, खाने की, पीने की, क्यों गए आप लोग सूरत, तो उन सब के जो कॉमन जवाब थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये, जैसे वो अपने मैक्सिमम ये अपने जो ओगणा वाला क्षेत्र था, ओगणा थाना क्षेत्र के अधिकतम बच्चे थे 70 में से भी, तो वहाँ पर 1 से 2 ट्रैफिकर इन्वॉल्व है। मैंने SP मैडम से भी निवेदन किया है कि उसका भी हम लोग पता लगवा रहे हैं कि इस तरह कैसे कौन से लोग, ये लोग क्या करते हैं कि ये मैपिंग करते हैं ट्रैफिकर्स कि यार ये इस बच्चे के माता पिता नहीं है, ये ऑर्फन है, काका भाव के पास रहता है, काका भाव को मोटिवेट करेंगे साहब पढ़ के क्या करना है, इस बच्चे को भेज दो अभी से काम करेगा साहब, तो ऐसे ऐसे बच्चों को ये लोग ट्रैक करते हैं और इनकी फैमिलीज को ये अलग अलग प्रलोभन देके इन बच्चों को या तो खरीद कर या कोई एक प्रलोभन देकर कि भाई एक मुश्त एक पैसा दे दिया, या हर महीने साहब आपको इतने पैसे मिल

0: जाएंगे, बच्चा अच्छा काम कर रहा, बहुत बढ़िया काम है, खाने पीने की सब सुविधा है, ये ऐसे बच्चों को वहाँ पर मिसगाइड करके लेके जाते हैं। अगर इन बच्चों को वहाँ पर जब चले जाते हैं, पहले उनको भी मोटिवेशन होता है, हम एक नई सिटी में जा रहे हैं, गाँव से निकल कर बड़ी मेट्रो सिटीज़ का एक क्रेज़ होता है, पहले भी एक दो बच्चे गए हो तो उनको भी लोग देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा गाँव में आता है तब उसका पहनावा अलग होता है, उसके हाथ में चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ वो किस तरीके से रह रहा है वो कभी भी कोई बच्चा आके नहीं कहता, वो बेस्ट पार्टी बताता है, नहीं तो सब उस पर हंसेंगे ये समझ के। तो पीयर प्रेशर ग्रुप भी काम करता है, जब बच्चे वहाँ जाते तब उनको मालूम पड़ता है कि भाई हम लोग कैसे रह रहे हैं, मैंने देखा था वहाँ बच्चों मुक्त कराते हुए, कुछ फोटोज़ पत्रिकाओं में वगैरह में छपे भी थे, आप देखेंगे उनमें खूब सारे बच्चे बिल्कुल सिंपल, एक उन्होंने पहन रखा है उनका इनर वियर है, ना कपड़े ना कुछ, इतनी गर्मी होती है, और सूरत में वो एक छोटे से फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे टेक्सटाइल में, साड़ी को लपेटने का, उस पर लोगो लगाने का, उसकी पैकेजिंग का, और ये अगर वो काम कोई अपना आदिवासी बच्चा देख ले तो कभी भूल के भी वो सूरत ना जाए किसी काम करने। तो ये जो पीयर प्रेशर ग्रुप है ये काम करता है। तीसरा ये है कि कई बार बच्चों को एकदम छोटा सा इंस्टेंट लाभ ज़्यादा दिखता है, हम लोग भी जब छोटे थे आपने भी देखा होगा, पढ़ाई के लिए हमें बार बार समझाना पड़ता था शायद घर वालों को, लेकिन शायद बाहर खेलने के लिए मोटिवेट ना करना पड़ता हो, तो कई बार आपको कहाँ आपका रुझान है, तो कई बार लोगों को पढ़ाई में ऐसा लगता है दिलचस्पी कम है, क्या करना है सब पढ़ के, और हाँ वो जा रहा है मैं भी चला जाऊँ, तो इस वजह से भी बच्चे थोड़े से डाइवर्ट होते हैं।
1: अगर बाल श्रम की हम बात करें और सरकारी प्रयासों की तरफ हम चलें, तो बाल श्रम को रोकने के लिए किन किन कानून या प्रावधानों का मतलब उल्लेख हम कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और किस तरह से उनको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है?
0: देखो, अगर चाइल्ड लेबर की बातचीत करी जाए तो चाइल्ड लेबर में मैं अक्सर अभी पुलिस विभाग को जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं उसमें कहता भी हूँ, मॉडल एफआईआर के मैं अक्सर पक्ष लेता हूँ। मॉडल एफआईआर का मतलब ये कि हमने जब शुरुआती तौर पर जब बाल श्रम रेस्क्यू करके एफआईआर दर्ज कराना शुरू किया था तो मैंने एक बार करीब 12 सेक्शन लगवाए थे सिंपल एक चाइल्ड लेबर के मामले में। बच्चा आदिवासी का SC ST एक्ट भी लगा, किशोर न्याय अधिनियम का सेक्शन 75-79 भी लगा, CLPRA भी लगा, हमारा BNS तब IPC चलती थी उसकी हमने इंडियन पेनल कोड उसकी भी धारा लगवाई, जो BSN भारतीय न्याय संहिता हो गया उसकी भी धाराएं लगी, हमने उस बच्चे के साथ में उसको मार पीटे के साथ में रात को जो उसका जो मालिक था उसको मारता पीटता था, हमने क्रूरल्टी के सेक्शन और लगाए। तो चाइल्ड लेबर के मामलों में बहुत सारे शोषण बच्चे के होते हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से बाल श्रम पर यदि आप फोकस करें तो दो कानून है हमारे पास, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तो है ही है, उसके सेक्शन 75 साफ साफ ये कहता है कि क्रूअल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन के बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो सामने वाले जो व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान है, उसको सजा मिलनी चाहिए, जुर्माना भी है और जेल भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है वो भी डेफिनेटली है ही है, वो भी साफ साफ कहता है, किशोर न्याय अधिनियम तो पूर्ण रूप से 18 साल से पहले के बच्चों की बात कर रहा है, उसमें कोई बाइफर्गेशन भी नहीं किया है कि किशोर बालक बालिका अलग है और ये है, लेकिन जो हमारा CLPR है उसमें फिर भी लिखा है कि 14 साल तक तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते हैं, और 14 से 18 में उसने सामान्य कामों को अलाउ किया है लेकिन हैजार्डस वर्क को अलाउ नहीं किया है।
1: अगर हम क्योंकि बाल श्रम के कानूनों की बात कर रहे हैं, बाल श्रम का हम इतना रोकने के लिए हम इतना प्रचार प्रसार भी सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन आम तौर पे अगर कोई व्यक्ति किसी को बाल श्रमिक के रूप में दिख जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, और किस तरह से अगर वो उसको बाल श्रम से मुक्त करवाना चाहता है तो उसे क्या स्टेप उठाने चाहिए?
0: सबसे पहला काम तो उस व्यक्ति को ये करना चाहिए कि आपको ये समझ लेना है कि इस बचपन को बचा के आप उसके परिवार का भलाई कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा मिथ हमारा ये होता है, अरे यार बढ़िया इसके इसके इससे शायद इसके विधवा माता का सहारा होगा, ये घर का कुछ पैसा दे रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा जो आज काम कर रहा है ये जीवन भर काम करता रहेगा यदि आपने इसको नहीं छुड़वाया तो आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये दूरदर्शिता रखते हुए उस बच्चे का जीवन बचाना है। अब दूसरी बात, ये बचाएंगे कैसे? तो भाई सबसे पहला हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कैसे बच्चे को लूँगा, मैं क्यों पुलिस के पास जाऊँ, इतना मेरे पास समय नहीं है। तो हमने एक डेडिकेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए है, बच्चों के संरक्षण के लिए है। सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं, आपको कोई बच्चा किसी मुसीबत में दिखता है तो आप टोल फ्री भारत सरकार का नंबर है 1098-1098 इसको डायल कर सकते हैं। हमारी जो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करेगी, बच्चे के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो उसके लिए करेगी। दूसरा, अगर वो बच्चा बिल्कुल ऑर्फन है, उसका कोई संभालने वाला कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप उस बच्चे को ले जाकर आपको पालना या आपको घर पर रखना, नहीं। हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत हर एक जिला मुख्यालय पर ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं जिसको कानून भाषा में हम होम्स कहते हैं, चिल्ड्रन होम और शेल्टर होम। तो अगर बच्चा कोई ऐसा भी है जिसका कोई संरक्षण वाला नहीं है, जो आपको देख के लगता होगा अरे बच्चा साहब काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, तो बिल्कुल हमारे अच्छे हॉस्टल्स हैं, होम्स हैं, जिसमें बच्चे का रहना खाना पीना दूध पढ़ाई सब कुछ फ्री है, चाहे बच्चा किसी भी जाति धर्म का हो, ऐसा नहीं सिर्फ SC ST के लिए, जनरल का बच्चा है, OBC का बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, 18 साल से कम का यदि कोई बच्चा आपको मिलता है

0: तो आप उसके संरक्षण के लिए सिंपल एक नंबर डायल करके भी उसका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर पंड्या, अगर बाल श्रम से अगर हम किसी बच्चों को मुक्त करवा रहे हैं, या फिर आपने जैसा कि बताया, आपने गत दिनों में सूरत माह से लगभग 70-80 बच्चे जो राजस्थान के ओगणा जाड़ोल क्षेत्र के हैं, इनको आपने छुड़ाया, तो क्या बाल श्रम से मुक्ति के बाद क्या उनके पुनर्वास के लिए या फिर उनके शिक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है? क्या ऐसी कोई संस्थाएं या फिर कोई इस तरह से सरकारी विभाग हैं जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं?
0: राजस्थान के बच्चे और राजस्थान की जनता तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि राजस्थान में तो डेडिकेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट है, कमिटीज़, और वो तो हर एक स्टेट में है। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात ये, सारे स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है WCD, महिला एवं बाल विकास विभाग। लेकिन राजस्थान में डेडिकेटेड बच्चों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट और है, WCD तो है ही, महिला एवं बाल विकास विभाग। हमारे यहाँ एक और विभाग बनता है, निदेशालय बाल अधिकारिता, डायरेक्टर चाइल्ड राइट के नाम से हमारा एक पूरा डेपरेट डिपार्टमेंट है, निदेशालय है जयपुर में, और हर एक जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बैठते हैं, उदयपुर में भी बैठते हैं, इनका ऑफिस यहीं आपके चित्रकूट नगर में है। तो वो डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, एक पूरी सेल है जो पूरी सेल बच्चों के अधिकारों के लिए ही काम करती है। नंबर टू, एक कमेटी और बनती है जिसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा होता है। बाल आयोग में जब हम लोग थे, हमारे माध्यम से इनके इंटरव्यूज होते हैं, आज भी वो कमेटी हर एक जिले पर है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसको कहते हैं CWC, पूरा नाम है बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी काम है कि बच्चे रेस्क्यू करने के बाद कैसे जाएंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, उन बच्चों का फॉलोअप लेना, बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ है नहीं हुआ उसको ट्रैक करना, बच्चों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना, और यदि कोई बच्चा बिल्कुल ऑर्फन है तो मैं जिस होम्स की बात कर रहा था उस होम में रखने का आदेश भी CWC ही जारी करती है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि बात की जाए तो CWC है, ये DCR डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट है, और तीसरा है DCPU जिसके कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जो हर 3 महीने में एक बार मीटिंग करती है और इन सब चीज़ों की निगरानी को सुनिश्चित करती है।
1: जाते जाते कार्यक्रम में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: साथियों, मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं लेकिन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि आप चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, हर एक धर्म में इन बच्चों को भगवान का दर्जा दिया है, ईश्वर का दर्जा दिया है। अगर वास्तव में ये ईश्वर हैं तो इतना फर्क क्यों? क्यों आज भी इन छोटे बच्चों को आपकी पी हुई झूठी चाय का कप उठाना पड़ता है? क्यों आज भी इन छोटे बच्चे इस ईश्वर स्वरूप को आपकी गाड़ियों के कांच साफ करने पड़ते हैं? क्यों आज भी इस ईश्वर को रस्तों पर कचरा बीनना पड़ता है, रात को होटल ढाबों पर काम करना पड़ता है? इस भारत राष्ट्र की आधी आबादी इन बच्चों की है, 43% पॉपुलेशन हमारे 18 साल से कम बच्चों की है। यदि ये बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अगर ये बच्चे आज भी होटल ढाबों पर छोटू के नाम से बुलाए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा? तो साथियों, मैं आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग तो प्रयासरत हैं ही समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए। आपको भी यदि अपने आसपास कोई बच्चा दिखे तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, 1098 पर कॉल भी कर देंगे तो भी एक सच्चे भारत के नागरिक होने का कर्तव्य अदा करेंगे। मेरा बस इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: आप थे डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत। और इसी के साथ नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम बस यहीं तक। अब दीजिएगा इजाजत रश्मि और मीनाक्षी को। नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

0: वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एफएम रेडियो लेक सिटी की आज के लोकल विंडो में आप सभी का स्वागत। आज है आप मीनाक्षी के साथ। कहा जाता है कि सलाह देने वालों से कीमती होते हैं साथ देने वाले अपने, लेकिन फ्राइडे स्पेशल हेल्थ ओरिएंटेड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हेलो डॉक्टर ऐसा कार्यक्रम है दोस्तों, जो हमेशा आपके साथ रहकर अनुभवी डॉक्टर्स की सलाह आप तक पहुंचाता है, ताकि आप जी सकें एक बेहतर जिंदगी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीबीएस जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वास उदयपुर।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच जीबीएच,
3: क्योंकि जीबीएच अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस आर चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
4: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है जीबीएच,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस आर चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
0: दोस्तों, भारत में पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट के मामले और उनके कारण होने वाली मृत्यु दर के आंकड़े काफी बड़े हैं। खासकर युवा वर्ग सीवीडी दिल की बीमारियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस वृद्धि का कारण मुख्य रूप से कोविड-19 पैंडेमिक के दीर्घकालीन प्रभाव और बिगड़ी जीवन शैली को माना जाता है। कई जानी मानी हस्तियां भी इसका शिकार हुई हैं। 40 से 69 की आयु सीमा में होने वाली जो डेथ्स हैं, उनका कारण हार्ट डिजीज ही है, जो कि एक चिंता का विषय है। और आज इस खास विषय पर, यानी कि युवाओं में बढ़ते हृदय रोगों पर जानकारी देने के लिए हेल्थ डॉक्टर में हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राज सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
0: डॉक्टर। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आज पहली बार आए हैं, तो हमारे जनता भी आपका परिचय जानना चाहेगी, तो हमारे श्रोताओं को बताएं आपने कहाँ से पढ़ाई की और कहाँ आपका रेजिडेंस है।
5: मैं डॉक्टर रविराज सिंह आहाड़ा हूँ। मेरा मूलतः उदयपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। मेरी पढ़ाई भी उदयपुर से हुई है। MD मेरी R&T मेडिकल कॉलेज से हुई है और DM कार्डियोलॉजी मैंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ से की है, उत्तर प्रदेश से।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो युवाओं में बढ़ती जो हृदय रोग बीमारियां हैं उन्हीं के बारे में है, तो युवाओं में दिल के संबंधी समस्याओं में वृद्धि के जो कारण हैं आजकल जो देखने में आ रहे हैं आंकड़े, मतलब कोई उम्र रह ही नहीं गई है, बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे युवा हों, क्योंकि ये तो अमूमन एक बीमारी मानी जाती थी बुजुर्गों की, पर जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं उसका कारण क्या है?
5: देखिए, हम आसपास आजकल देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, आपके भाई बहन हों या फिर दफ्तर युवा साथी हों, 25 से 40 साल की उम्र में लोग जिम जा रहे हैं, बिल्कुल फिट हैं, और अचानक से देखते हैं कि दर्दनाक खबर आती है कि उनकी मौत हो गई। आप ऑफिस में बैठे बैठे कप चाय हाथ में लिया हुआ उनके एकदम बेहोश हो गए और मौत हो गई। जिम में वर्कआउट करते करते एकदम से बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। तो ये जो दिक्कत है युवाओं में, उसका मुख्यतः कारण जो है, एक सबसे पहले तनाव सबसे मुख्य कारण है। तनाव में ये है कि आपका देखिए दिन रात काम का दबाव, आजकल युवाओं को जो कॉरपोरेट्स में नौकरी करते हैं उन पर प्रेशर रहता है, टारगेट्स का प्रेशर रहता है कि अगर आपने इस महीने में ये नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा, उनकी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उनके पैसों के जो पैसा जितना मिल रहा है उसके हिसाब से डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है, तो उनको कार करना है, उनको मकान बनाना है, उनका जीवन शैली अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो उस शैली से उनका जो पैसा जितना मिल रहा है उतना उनका नहीं हो पाता, तो उसको कोप अप करने के लिए, उसको मीट करने के लिए वो उसके लिए स्ट्रेस में रहते हैं कि ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एड्रेनलिन जो हार्मोन्स वगैरह ये स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाते हैं और इसके कारण ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो धीरे धीरे हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, जो हम जो खान पान हमारा है, जैसे आप देखेंगे रिफाइंड शुगर्स हैं, ट्रांस फैट है, पैकेट बंद जो खाद फूड पैकेट, आजकल युवा जो आप देखेंगे जितने भी मेट्रो सिटीज़ में हैं, जो शहरों में आजकल हमारे शहरों में भी जो रह रहे हैं, वो ज़्यादातर ट्रांस फैट या पैक्ड फूड आइटम्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो शाम को जैसे उनका ऑफिस ख़त्म होगा और वो निकलेंगे और आप जाएंगे कि थैले रेडी या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा के, वहाँ पे जो

0: फैट्स वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लीन फैट के शिकार हो रहे हैं।
1: लीन फैट का क्या मतलब है डॉक्टर साहब?
0: लीन फैट के मतलब बाहर से दिखने के कारण, कि बाहर आप दिख रहे हैं जैसे जिम जा रहे हैं, बिल्कुल फिट हैं, आपको लगेगा कि ये हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो फैट है वो आपके धमनियों में जमा होता रहता है, जो एक अटैक का मुख्य कारण बनता है।
1: ये कोलेस्ट्रॉल से अलग है?
0: नहीं, ये लीन फैट ही कोलेस्ट्रॉल ही है
1: अच्छा,
0: बेसिकली, उसी उसी का एक रूप है। एक्चुअली लीन फैट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें बाहर से वो लगता है कि वो व्यक्ति पतला है, उसको फिट है, बिल्कुल जिम में जा रहा है, आप देखेंगे पेट में उसके एब्स आ रखे हैं, सब बिल्कुल फिट है, वो दौड़ रहा है वहाँ पर ट्रेडमिल पर, बट उसको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, रोज़ जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो है धीरे धीरे खान पान जो उसका जो गलत है, उसकी वजह से धीरे धीरे फैट जमा हो रहा है धमनियों में, जो उसका एक कारण बनता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, ये जो जिम की बात आपने की, तो अमूमन ये भी कहा जाता है कि आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना ही आपको कोई भी योग, व्यायाम, कसरत या जिम में आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली इसलिए ऐसा हो गया, क्या ये होता है?
0: बिल्कुल, एक्चुअली इसमें यह होता है कि वनरेबल प्लेक नाम की एक चीज़ होती है। वनरेबल प्लेक क्या होता है, पहले से आपके धमनियों में जो वसा, जो फैट जमा है, वो आपके वहाँ पे जैसे ही आप स्ट्रेस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो टूटने का खतरा रहता है, और टूटने की वजह से आपके आगे जाके ब्लॉकेज पैदा करता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से उसके दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है। दूसरा, जो जिम में हम जब जाते हैं तो उसमें अत्यधिक वर्कआउट करने से आपके हार्ट रेट बढ़ती है, और कई बार अगर आपको कोई अनुवांशिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो हार्ट रेट बढ़ रही है, तो वो आपको ऐसी हार्ट रेट में कन्वर्ट हो जाती है जो खतरनाक, जिसको हम वेंट्रिकुलर अरिथमियाज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और वो भी एक बहुत खतरनाक। तीसरी चीज़, मांसपेशियों में भी हार्ट की दिक्कत होती है। हम 25 से 40 की उम्र में कभी डॉक्टर के पास जाके हमारा हार्ट का चेकअप नहीं कराते, तो मांसपेशियों में दिक्कत रहती है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसमें जो युवा अगर जिम जा रहा है और दौड़ रहा है, और उसमें उसको वर्कआउट करते हुए उसमें भी बेहोशी आना या फिर डेथ होने का चांसेस रहते हैं।
1: ये जैसे वर्कआउट, एक जिम की आपने बात की, कितने केसेस ऐसे भी आए हैं कि डांस कर रहे हैं नॉर्मल एक पार्टी वार्टी में, चाहे स्टेज पे चाहे नीचे ग्राउंड पर, और एकदम सडन डेथ?
0: बस यही कारण है कि जैसे हमने बताया कि जो आपका वल्नरेबल प्लेक जो होता है, वो आपका जैसे कि एक रुकावट है, वो बनी हुई है। आप जैसे ही स्ट्रेस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, जो बॉडी को, हार्ट को रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण हार्ट ज़्यादा पंप करता है, और पंप करने के लिए उसको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो वल्नरेबल प्लेक होता है। कई बार वो टूट सकता है ब्लड के बहाव की वजह से, या फिर कुछ एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से, और उसकी वजह से उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, मैंने अरिथमियाज बताया, अरिथमियाज में भी हो सकता है जैसे धड़कन इतनी तेज़ बढ़ गई डांस करते हुए स्टेज पर, कि उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया और उसकी वजह से मरीज की डेथ हो गई।
1: जी डॉक्टर साहब, पहले हमारे श्रोताओं को बता दें कि ये एक लाइव प्रोग्राम है, और दिल की बीमारी से संबंधित यदि आपके भी सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने नाम और उम्र के साथ पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि राज सिंह, और नाम नंबर जो हमारे हैं 9462697568, 9462697568, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, और आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर रवि, अगला सवाल जो हम अगली चीज़ की तरफ आते हैं, कारण तो हमने काफ़ी अभी बोले और कभी आगे सवालों में भी आएंगे, लक्षण सामान्य हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो बीमारी है ये बुज़ुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, एक दौर वो था कि हार्ट अटैक, लेकिन अब ये दायरा ख़त्म होता जा रहा है। तो जो नॉर्मली जो हार्ट अटैक देखे जाते थे या दिल की जो बीमारियां देखी जाती थी, और अब जो नई आई हैं, क्या उनमें कुछ अंतर है, कुछ उनके लक्षण में या उनकी गंभीरता में?
0: इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें हमें माना गया था कि हार्ट की जो बीमारी है बुज़ुर्गों की बीमारी है, तो हम क्या करते हैं कि जो कम उम्र में हमें दिक्कतें होती है, जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द होना, या वर्कआउट करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, तो उसको हम क्या नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी मैं यंग हूँ और मेरे को ये बीमारी नहीं हो सकती। तो मुख्यतः जो कारण है नज़रअंदाज करना अपनी हेल्थ को, यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आगे जाकर ये एक फैटल कन्वर्ट हो जाता है, डेथ में कन्वर्ट हो सकता है, और या आगे दिक्कत कर सकता
1: डॉक्टर रवि, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
0: है। यस।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविराज सिंह, और दिल से संबंधित रोगों के बारे में हम डॉक्टर साहब से सवाल भी करेंगे और श्रोताओं के सवाल भी हम तक आने लग गए हैं, और ख़ास आज युवाओं में जो बढ़ते दिल के रोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सडन डेथ के मामले हैं, इन्हें नाम दिया गया है साइलेंट अटैक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविराज सिंह, और दिल से संबंधित रोगों के बारे में हम डॉक्टर साहब से सवाल भी करेंगे और श्रोताओं के सवाल भी हम तक आने लग गए हैं, और ख़ास आज युवाओं में जो बढ़ते दिल के रोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सडन डेथ के मामले हैं, इन्हें नाम दिया गया है साइलेंट अटैक, क्या है ये?
1: इसमें जो हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, जो हमारे साइंटिफिक में होता है, सडन कार्डियक डेथ में मुख्यतः एक तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हार्ट अटैक जिसे हमें बोलते हैं, वो हो सकता है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसमें हृदय बहुत तेज तरीके से कांपने लगता है, वो हो सकता है। दूसरा जो कारण है, कॉन्जेनिटल कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से चैनलोपैथीज जो हमारी भाषा में हम बोलते हैं, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हार्ट की गति तेज हो जाती है, और उसकी वजह से वीएफ होने की वजह से पेशेंट का डेथ हो सकती है।
0: ये डॉक्टर साहब, जैसे कम उम्र में हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, वैसे ही कम उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये भी बीमारियां जो बड़ी उम्र की समझी जाती थी, ये भी आजकल बहुत देखने में मिलती हैं, इनका कारण वो भी खान पान, जीवन शैली?
1: बिल्कुल, सामान्यतः ये देखा गया है कि जो वेस्टर्न युवा हैं और भारतीय युवा हैं, उसमें देखा गया कि वहाँ की डेमोग्राफी से हमारे 10 साल पहले ये सब बीमारियाँ आने लगी। पहली चीज़, भारत, आपको पता है कि युवाओं की संख्या भारत में बहुत अत्यधिक है, और उसकी वजह से लाइफस्टाइल और जीवन शैली का जो अभी जो चेंज आया है, उसकी वजह से जो युवाओं में, जो अभी आप देखेंगे जैसे 25 साल बाद इंजीनियरिंग किसी ने की और वो तुरंत पुणे मुंबई जाके जॉब में लग जाता है, और उस जगह पे आके इतना स्ट्रेस लेता है उसकी वजह, उसके बाद उसके खान पान, क्योंकि वो घर से अलग रहता है तो खाने पीने में उसके दिक्कतें आती है, वो बाहर का खाता है, और जो खाता है वो रिफाइंड ऑयल्स और ये सब जो बार बार तली गली चीज़ें हैं, और इस तरह से करता है। तीसरी चीज़ें आप देखेंगे जैसे सिगरेट वगैरह, आजकल आप अमूमन देखा जाएगा कि आपको कई जगह सिगरेट में युवा ही आपको अधिकतर वहाँ मिलेंगे।
0: हाँ, आजकल तो पुरुष हो, लड़कियां भी, मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही आजकल बहुत ज़्यादा आदि नज़र आने लग गए हैं।
1: तो यही एक ये प्रमुख कारण है। चौथा आप देखेंगे जो कल्चर है, आप देखेंगे आपका 5-day week रहता है, फ्राइडे तक रहते हैं, शनिवार रविवार पब कल्चर हो गया है आजकल, वहाँ पर जाकर नशीले पदार्थों का सेवन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जैसे आप जो से के एम्फिटामिन्स जो लेते हैं, कोकेन लेते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है जो आपके हार्ट अटैक को बढ़ाता है।
0: इनको कैसे ठीक किया जा सकता है डॉक्टर साहब, काउंसलिंग वगैरह कुछ या
1: इनका
0: क्या?
1: हमें ये है कि जागरूकता फैलानी होगी युवाओं में, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान लें, नींद पूरी लें, तनाव कम लें। ये कहने से तो होगा नहीं, बट धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाने से और लोगों को अवेयर करने से कि ये उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, और उनको ये बताने से कि ये बीमारी अब बुज़ुर्गों की नहीं रही, युवाओं की भी हो गई है, तो आप भी, ये ख़तरा आपके घर पे भी दस्तक दे रहा है, तो आप इसे थोड़ा सा समझिए, देखिए, और अपने आप के सुधार के लिए काम कीजिए।
0: घर के बड़ों का भी रोल रहेगा इसमें, माता पिता, उनको थोड़ा सा इस तरीके से ब्रिंग अप उनको करें, ताकि वो इन चीज़ों से, नशीले पदार्थों से, या जो एक है ना, कहते हैं पहले भी कहा जाता था कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, तो शौक वैसे ही रखें जितनी इनकम रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये माता पिता का यह रोल रहेगा कि वो शुरू से बचपन से सिखाएं उनको कि हमारा जितना सेविंग के लिए प्रति जागरूक करें, उन्हें बताएं कि हमारी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं करें, हम ज़्यादा जीवन शैली जो देख रहे हैं, हम जो बड़े चकाचौंध वाली दुनिया, उससे प्रभावित ना होकर और ऐसे कदम ना उठा ले जिससे वजह से हमारे हार्ट के हेल्थ पे प्रभाव पड़े।
0: ये भी आपने सही पॉइंट की तरफ इंगित किया है डॉक्टर साहब, कि गलत कदम, ये वाकई में जो सुसाइड केसेस भी अगर हम जिनको कहें तो आजकल ये भी ज़्यादा होते हैं कि बच्चे झेल नहीं पाते जो संघर्ष है जीवन का, उससे डर कर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और उसकी शुरुआत स्कूल लेवल से की जाए तो कैसा रहे?
1: वही मैं कह रहा हूँ, उसके जागरूकता हमें फैलानी होगी, हमें स्कूल से, हमें बच्चों को शिक्षा में ही हमें ये डालना होगा कि कैसे अपना मानसिक तनाव कम करें, हम कैसे, अगर आप जैसे ऑफिस में भी हैं, उसमें तनाव जो ऑफिस का बढ़ रहा है उसको तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को कैसे योग प्राणायाम उसके द्वारा आप अगर बिल्कुल सही कर सकें, तो धीरे धीरे आप उससे अपने हार्ट के लिए बढ़िया रहेगा।
0: योग प्राणायाम में किस किस तरीके के कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहिए?
1: योग प्राणायाम में, उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम में जो ये जो आपके जो श्वास लेने की जो अलग अलग होती है, अनुलोम विलोम और ये होता है,

0: कपालभाति अनुलोम, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस कम करती है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी मददगार हो सकते हैं,
1: लेकिन किसी विशेषज्ञ के निर्देशन पर ही करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो ये सिंपल एक्सरसाइज लगती हैं, लेकिन अगर विशेषज्ञ से एक बार आप सीख लें तो फिर आप घर पे भी कर सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कई बार कहा जी भी जाता है ना कुछ एक्सरसाइज के लिए कि जिनको ये समस्या है वो ये वाली ना करें, ये
0: हाँ,
1: भी
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: बिल्कुल।
1: चीजें जुड़ी होती हैं। डॉक्टर साहब, धूम्रपान का हमने कहा, जैसे मदिरा, इनमें से कौन सी ज्यादा घातक होती है युवाओं के लिए, या दोनों ही बहुत ज्यादा सीवियर अफेक्ट करती हैं?
0: वैसे तो दोनों ही ज्यादा सीवियर अफेक्ट करती है, पर धूम्रपान का रोल इसमें मैं सबसे ज्यादा कहूंगा। और आजकल जो नया ट्रेंड चला है कि लोग कहते हैं हम धूम्रपान नहीं करते हैं, वो ई सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो आप देखेंगे शहरों वगैरह में, जिसे वेपिंग कहते हैं, तो वेपिंग का चलन भी बढ़ा है। तो हमें ये लगता है कि सिगरेट हमारे लिए नुकसान थी और ये जो ई सिगरेट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही बराबर रूप से घातक हैं और हृदय के लिए उतने ही नुकसानदायक।
1: ई सिगरेट में क्या चीज़ होती है? तंबाकू नहीं होता?
0: ई सिगरेट में तंबाकू होता है, वेपिंग वाला सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि आपको सिगरेट को जलानी नहीं होती और एक बॉक्स वो देते हैं उससे आप स्मोक करते हैं।
1: तो तंबाकू तो जा ही रहा है अब तक।
0: हाँ, नुकसान तो आपको बराबर वैसे पहुँचा ही रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल भी हम तक आने शुरू हो गए हैं, तो हम
0: जी
1: उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। उदयलाल टेलर हैं, ये कहते हैं, डॉक्टर जी को नमस्कार। एक बार बाईपास सर्जरी होने के बाद प्रॉब्लम होने पर दोबारा बाईपास सर्जरी हो सकती है क्या, या स्टेंट डलवा सकते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल, बाईपास सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टेंट हम नहीं डाल सकते हैं, तो उसमें हम बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी एक तरीके से ये समझ लिए कि रास्ता हमने एक नया रास्ता बना लिया है ताकि हार्ट को ब्लड पहुंच सके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमने वो रास्ता बनाया उसमें भी ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो उसमें ब्लॉकेज आते हैं तो हम जब एक मरीज को दिक्कत होती है तो हम फिर से एंजियोग्राफी करके उसे देखते हैं। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है जो बाईपास बनाया वो रास्ता को खोलना ज़्यादा सही है या पुरानी धमनियाँ जो हैं उसको खोलना ज़्यादा बेटर है। तो अगर उसको खोलना ज़्यादा, उसमें हम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद अगर स्टेंट से खोल सकते हैं तो हम स्टेंट से खोलते हैं, और नहीं हो तो वापस से पुनः बाईपास भी किया जा सकता है।
1: मतलब बाईपास वापस करने की नौबत भी आ सकती है?
0: बिल्कुल, एक्चुअली इसमें यह होता है, दो तरह के ग्राफ्ट्स लगते हैं, एक आर्टेरियल ग्राफ्ट लगता है और वीनस ग्राफ्ट लगता है। आर्टेरियल ग्राफ्ट मतलब आर्टरीज, जो ब्लड हम हार्ट से जो सब ऑर्गन्स को पहुंचाती है उसको आर्टरीज कहते हैं, और वीन जो वापस पेरिफेरल ऑर्गन से हार्ट में जो ब्लड ले जाती है उसको वीनस ग्राफ्ट कहते हैं। तो आर्टेरियल ग्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और आर्टेरियल ग्राफ्ट जो लगते हैं उसमें भी बंद होने के चांसेस रहते हैं। अब उस पर डिपेंड करता है कितने ग्राफ्ट लगे, कहाँ कहाँ ग्राफ्ट लगे, उस पर हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वापस बाईपास कराना है या एंजियोग्राफी करने के बाद सिर्फ दवा पे रखना है या फिर हमें स्टेंट लगाना है।
1: हार्ट अटैक या दिल के रोगों के कौन कौन से एक तो प्रमुख रोग होते हैं डॉक्टर साहब, एक बार ये भी बताएं।
0: हार्ट अटैक के जैसे हम रोग बताते हैं तो उसमें या तो मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकते हैं, या अनुवांशिक कॉजेज़ हो सकते हैं, या फिर लाइफस्टाइल से जुड़े कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करें कि अनुवांशिक कॉजेज़, उसमें होता है प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें ये देखा जाता है कि हमें ये सोचते हैं कि धमनियों में धीरे धीरे जो हमारा फैट जम रहा है वो उम्र के साथ जमता है, तो पर यह है कि आजकल जो देखा जा रहा है धीरे धीरे ये 10 साल, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले हमारे युवाओं में जमना, तो प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और धमनियाँ धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देती है, इससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा एक फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसेरोलेमिया होता है, जिसमें पारिवारिक अनुवांशिक होता है, जिसमें परिवार में है कि LDL बढ़ा हुआ मिलेगा, जो जिसमें परिवार में पहले से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को रहा है और अभी बच्चों में भी उसमें LDL बढ़ा हुआ आएगा, तो उस स्थिति में उनके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा जो ये है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो मैंने आपको बताया कि कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट की जो दीवारें होती है वो मोटी हो जाती है, अत्यधिक मोटी होने की वजह से उसकी डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, और हार्ट अगर उसका काम नहीं कर पाता तो भी उसमें हृदयाघात या उसका खतरा बढ़ जाता है। चौथा कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज, अनुवांशिक तरीके से उसकी जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है वो पहले से ही एनोमलस है, मतलब उसका अलग तरीके से बनावट है, और उसकी वजह से भी हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कावासाकी डिजीज़ और ये कुछ डिजीज़ है हमारे मेडिकल फील्ड में, इसमें क्या होता है कि नसों में गंभीर सूजन पैदा कर देती हैं, इस सूजन की वजह से आगे चलकर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है।

0: चौथा है थ्रोम्बोफिलिया, जैसे शरीर में खून का थक्का जमने की जो है वो बढ़ जाता है। हमारे खून ऐसा बना है कि इसमें थक्का नहीं बनने, नेचुरली थक्का नहीं बन, पर ये ऐसी बीमारी जिसमें थक्का बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। उस थक्का बढ़ने की वजह से वो जाकर आपके हार्ट में अटक जाएगा, तो उसकी वजह से अटैक आ सकता है। फिर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे आप देखते हैं कि मोटापा खान पान की वजह से, बच्चे जो हैं आप देखेंगे 10 साल के 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी मोटापा बहुत रहता है, तो उस मोटापे की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और उनका धीरे धीरे दिनचर्या ऐसी हो जाती है, लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि वो बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड्स खाना, तो ये भी आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। दूसरा जो मैंने कहा फीमेल्स में हार्ट रोग जो बढ़ता है उसका एक ओसीपिल्स एक कारण है। ओसीपिल्स जो हम रेगुलर लेते हैं उसकी वजह से भी हार्ट का अटैक बढ़ता है। चौथा, अत्यधिक फीमेल्स आप देखेंगे इमोशनल बहुत होती हैं, वैसे पुरुष भी होते हैं बट हाँ ये माना जाता है कि फीमेल्स इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें अत्यधिक भावनात्मक अगर कभी फीमेल होता है उसमें, तो उसमें हार्ट अटैक खतरा बढ़ता है, जिसे हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। उसके अलावा चैनलोपैथीज जो हमारे उसमें है, जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम हमारी भाषा में जो हम बोलते हैं, इससे भी आपके हृदयाघात या हृदय की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाना उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं।
1: एक होता है एंजाइना अटैक और एक ये हार्ट अटैक, एक कार्डिक अरेस्ट, सब अलग अलग
0: है। बिल्कुल सब अलग अलग है। एंजाइना अटैक, एंजाइना में ये बोलते हैं जिसमें आपको सीने में दर्द, हमारी भाषा में जो सीने में दर्द जो कि हार्ट की वजह से होता है उसे हम एंजाइना कहते हैं, क्योंकि सीने में दर्द बहुत कारण से हो सकता है। वो आपके मांसपेशियों की वजह से भी हो सकता है, आपके लंग्स की वजह से भी हो सकता है, अत्यधिक तनाव की वजह से भी हो सकता है, गैस की वजह से भी हो सकता है और एक हार्ट की वजह से भी। तो जो दर्द हार्ट की वजह से होता है उसको हम एंजाइना कहते हैं। अब जो सडन कार्डियक डेथ, और दूसरा आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि इसमें हार्ट की धड़कन बंद हो जाना। देखिए अगर हम इसको समझें तो वैसा है कि कमरे में है तो एक तो नल की पाइपलाइन है और दूसरी इलेक्ट्रिक हमारे कनेक्शन है, तो हार्ट में भी दो ही तरीके हैं, एक तो हमारे जो ब्लड को पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन है और दूसरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन ब्लड को पंप करवाता है और ये जो वो जो ब्लड जो आता है वो नलियों के द्वारा होके हार्ट की वाल्व पे जाता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहती हैं। तो कभी कभी जो कार्डियक अरेस्ट जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है उसमें दिक्कत, एक तरीके से समझने के लिए हम बता रहे हैं कि उसमें दिक्कत होने की वजह से, वो बंद होने की वजह से उसमें अरेस्ट हो जाता है, वो हार्ट का पंपिंग फंक्शन ख़त्म हो जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। रविराज सिंह आज हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, और दिल से जुड़े सवाल आपके हम तक पहुंच रहे हैं। एक बार नंबर फिर बता देते हैं, 9462697568 हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। डॉक्टर साहब सिम्टम्स, इलाज और रिकवरी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक गीत।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
0: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
1: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: श्रोताओं हेलो, डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ये लाइव प्रोग्राम है और आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविराज सिंह, और आज हम खास युवाओं में होने वाले दिल के रोगों के विषय में डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल हमारे पास आ रहे हैं तो हम पहले उन्हें ले लेते हैं। ये अमृत सेन जी हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब को, अमृत सेन का नमस्ते। मेरी जिज्ञासा है, एक बार किसी को बाईपास सर्जरी हो जाती है तो वो कितने साल चलती है?
3: देखिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट कौन से लगे। अमूमन ये माना जाता है जो आर्टेरियल ग्राफ्ट जो लगते हैं वो हमेशा लंबे समय तक चलते हैं और हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग भी मरीज को कोई दिक्कतें ना हो, लेकिन जो वेनस ग्राफ्ट होते हैं उनका बंद होने की ज़्यादा रहती है प्रोबेबिलिटी, और इसीलिए हम भी ये कहते हैं कि आर्टेरियल ग्राफ्ट प्रेफर करें। पर डिपेंड करता है कि उसके बाद उसकी जीवन शैली कैसी है। आपने डॉक्टर ने इलाज कर दिया, ग्राफ्ट लगा दिया, पर अगर आप धूम्रपान वगैरह लेते करते रहे, आपका जीवन में आपने व्यायाम या दवाइयाँ छोड़ दी, तो ये सब अगर आपके जीवन शैली में अगर सुधार नहीं होगा या डॉक्टर की सलाह आप बराबर नहीं मानेंगे तो फिर आपको ज़्यादातर वापस बाईपास कराने या ग्राफ्ट बंद होने के रिस्क हो जाती है।
2: ये हमारे अगले श्रोता हैं चंद्र प्रकाश।

0: चित्तौड़ा जी, ये कहते हैं डॉक्टर साहब, हार्ट के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी आप दे रहे हैं, सभी वर्ग के बच्चों युवाओं में अचानक दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लग जाए तो उसे समय क्या इलाज करना चाहिए, और इसी तरह मुझे 2016 में अचानक हाथ में दर्द, कंधे में दर्द 2:30 बजे हुआ, अमेरिकन हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि 95% वेन ब्लॉक है, स्टेंट डालना पड़ा, और ये अहमदाबाद भी गए थे और वहाँ पे भी बलून डालकर फिर से अचानक इनकी सांस की जो धड़कन है वो बढ़ने लग गई थी, 10 मिनट तक बैठने पर वापस ठीक हो जाता, और इसके साइड इफ़ेक्ट लेफ्ट साइड की इनकी भी पूरी बंद बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा इन्होंने मैसेज लिखा है, छुट्टी भी ली इन्होंने, फिल्मी गीत सुनकर दिल बहलाते हैं, एक कहते हैं ना म्यूजिक थेरेपी भी आपको तनाव मुक्त रखती है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ये शायद उसी ही अपना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने बात कही कि एक तो हम सिम्टम्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती है तो मुख्य रूप से कैसे पता चले कि ये जो आपको हो रहा है प्रॉब्लम, ये दिल से जुड़ी हुई है।
1: देखिए, इसमें जो कॉमन सिम्टम्स जो होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है कि आपके सीने में जकड़न जैसा होना। अगर आपको चलने पे सांस फूलना, सीने में जकड़न होना, या फिर आपको बार बार खट्टी टकार आना, जैसे कई बार डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते, सीने में जकड़न वैसा नहीं होता है, बट उनको ऐसा लगेगा कि पेट में उनके दर्द है, कई बार ऐसा होगा कि उन्हें गैस बन रही है, बदहजमी हो गई है, बट वो भी एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा हो तो तुरंत एक सबसे पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं वो एक ECG है, आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें जाकर आप एक ECG करा लें और एक ब्लड की टेस्ट होती है वो करा लें, उससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपको हार्ट अटैक नहीं आया है या आया है, और अगर है तो उसमें ये रहता है कि कम से कम समय में अगर आप उसका उपचार करा लें। जैसे कई बार हमारे पास मरीज आते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब आप अभी अटैक आया है तो क्या हम उन्हें अहमदाबाद ले जाएं, क्या हम उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाएं। देखिए, बात ये होती है कि अगर आप किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ पर अगर सुविधा है तो आप उसे तुरंत ही वहाँ पर एंजियोग्राफी करवा कर पहले तो पता कर लें कि ब्लॉकेजेस कितने हैं और क्या हैं, और अगर उनमें स्टेंट डाल सकते हैं तो उसको तुरंत करवाएँ, क्योंकि जितना समय हम कम उस ब्लॉक वेसल्स को देंगे और उससे क्या होगा, जितना कम समय में हम उसको खोल पाएँ तो उससे आपका जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो बची रहेंगी और आपका हार्ट का फंक्शन बचा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर लंबे समय तक वो नसें ब्लॉक रही तो उसमें जो मसल है वो डेड हो जाएगी, नेक्रोसिस जैसे हम कहते हैं, वो डेड हो जाएगी, और फिर अगर उसको बाद में खोलेंगे भी तो भी उसमें एक सूखे पौधे की तरह जिसमें फिर से फूल नहीं आ सकते वैसे हो जाती है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि जैसे ही अगर आपको तकलीफ हो तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं, वहां जाकर ECG और ब्लड टेस्ट करवाएं, और अगर लगता है कि अटैक आया है तो तुरंत एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी करवाएं।
0: डॉक्टर साहब, चित्तौड़ा साहब ये भी लिखते हैं साथ में कि इनके जो मेडिसिन चल रही है उसके बाद भी कंधों में जो दर्द है वो इनके बना ही रहता है, तो शायद इनको बाईपास भी बोला हुआ है, तो ये सलाह भी मांगना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वर्षों से मैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सुनता हूँ और जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं उनसे काफ़ी मतलब इनको सहायता मिलती है, तो इनको करवाना चाहिए, शायद ये पूछना चाह रहे हैं।
1: इसमें ये है दर्द कि जो एंजियोग्राफी इनकी आखिरी बार जो हुई थी उसकी एक CD बनकर आती है, वो CD किसी भी डॉक्टर को या हमें आकर दिखा सकते हैं, हम अमेरिकन सिटी हॉस्पिटल में रहें तो वहाँ पर आके दिखा सकते हैं और उससे हम डिसाइड करेंगे कि इनका स्टेंट से ठीक हो सकता है, बाईपास ठीक रहेगा या सिर्फ दवाइयों पे रहेंगे। अगर स्टेंट से ठीक हो सकता है तो स्टेंट के माध्यम से उसे ठीक किया जाएगा, अगर बाईपास बताया जाएगा तो बाईपास के माध्यम से हम उनको ठीक करेंगे, और अगर दवाई रखेगी तो दवाई जो है हम जिसे ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी कहते हैं, सिर्फ मेडिकल थेरेपी नहीं, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी मतलब हर मरीज के हिसाब से दवा अलग अलग होती है, उस दवा का उनका संतुलन बैठाकर वो दर्द ठीक किया जा सकता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि ना एक बार आपने अभी एक सवाल में कहा था एसिड की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की, तो युवा क्योंकि ये सोचते हैं कि भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उनको कभी महसूस भी होता है अपर साइड में पेन तो वो यही सोचते हैं कि ये गैस या एसिडिटी ही होगी और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सिम्टम्स आपने बताए हैं, कुछ हमें ECG जो है करानी चाहिए, कई बार ये भी देखा गया कि ECG नॉर्मल आती है।
1: बिल्कुल, ऐसे ये होता है कि जैसे आज मुझे अभी जकड़न हुई और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया तो हो सकता है मेरी ECG नॉर्मल हो, पर हम कभी भी एक ईसीजी करवाकर

0: हम मरीज को सलाह नहीं देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, उसमें हमारे मेडिकल साइंस में सीरियल ईसीजी और सीरियल ट्रॉप का एक प्रावधान है। उसका मतलब यह है कि मरीज अभी आया है, उसका ईसीजी होगा, एक ट्रॉप्टी होगा। अगर वो दोनों नेगेटिव आते हैं लेकिन सिम्टम्स उसके टिपिकल हैं, तो हम मरीज को वहीं हॉस्पिटल में रखते हैं, इमरजेंसी में रखते हैं, और उसके सलाह देते हैं कि 3 घंटे बाद वापस से वो एक ईसीजी और एक ट्रॉप कराए। अमूमन ना 3 घंटे में उसका वापस से ईसीजी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ट्रॉप भी बढ़ जाता है।
1: थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कि ईसीजी, इको टेस्ट और ट्रॉपटीन सब में क्या अंतर होता है, किस तरीके के टेस्ट होते हैं?
0: बिल्कुल, ईसीजी जो मैं बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरह के हार्ट काम करता है, एक तो नसों में ब्लड सप्लाई होती है और दूसरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, इकोकार्डियोग्राफी जो होता है वो हार्ट की जो मसल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जैसे कमरा देख रहे हैं तो कमरे की दीवारें कैसी है वो हमें इको से पता चलेगा, कमरे के गेट कैसे हैं मतलब वॉल कैसे हैं हार्ट के वो हमें इको से पता चलेगा। ईसीजी से हमें उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है। और
1: ट्रॉपटी
0: ट्रॉप्टी, ट्रॉप्टी एक्चुअली ये है कार्डियक मार्कर की तरह माना जाता है। कार्डियक मार्कर में जैसे कि जब आपका हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है तो हार्ट एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसे ट्रोपोनिन कहा जाता है, वो ट्रोपोनिन आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसको हम डिटेक्ट करके पता लगाते हैं कि हार्ट पे स्ट्रेस हो रहा है और अभी हार्ट को अटैक आने की संभावना है या अटैक आ चुका है। उसके लिए ट्रॉप्टी होता है, एक CKMB भी होता है। ये सारे पैनल टेस्ट हम करवाते हैं जिससे पता चल सके कि मरीज में हृदयाघात हुआ है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कुछ तो सिम्टम्स या कुछ पेशेंट कहें हम ऐसे ही बीमारी से जब दिल पे उनके जोर पड़ता है, कारण कुछ भी हो, तो कभी कभी तो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी अस्पताल पहुंचने का समय ही नहीं मिलता। जैसे गोल्डन आवर्स हम दिमाग की बीमारी में, न्यूरो में कहते हैं गोल्डन आवर्स होते हैं, हार्ट में भी होते हैं क्या?
0: बिल्कुल, हार्ट में भी होते हैं। उसमें डोर टू जो बलून टाइम होता है 120 मिनट्स का होता है, मतलब आपके आप जैसे आपको चेस्ट पेन हुआ आप 90 मिनट के अंदर तो अस्पताल पहुंच जाएं, और अस्पताल पहुंचने के 120 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो हार्ट की धमनियाँ खोल देनी चाहिए जिसकी वजह से उसका हार्ट पे बचाव हो सके, उसका जो मसल मास है वो डेड नहीं हो जाए और आगे आपका हार्ट का फंक्शन बना रहे।
1: मतलब जल्दी से जल्दी हमें अस्पताल
0: बिल्कुल,
1: पहुंचना है।
0: जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है। हमें अगर अटैक आता है तो एंजियोग्राफी करवानी है, और एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज आता है तो उसे तुरंत खुलवाने का प्रयास करें, उसे डिले ना करें, क्योंकि डिले करना भी, क्योंकि हमें पता तो चल गया है कि हमें ब्लॉकेज है लेकिन अगर खुलेगा नहीं तो वो हार्ट को धीरे धीरे डैमेज कर देगा और हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा।
1: घर पर रहकर कुछ हो सकता है क्या, एकदम इंस्टेंट अगर कुछ करना हो?
0: बिल्कुल, एक मैं जब वहाँ पे उत्तर प्रदेश में था, मैंने आपको बताया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट लखनऊ से मैंने किया है, तो वहाँ पे कानपुर में उन्होंने एक पैकेट तैयार किया था जिसको हम लोडिंग डोज कहते हैं, कि जब पेशेंट में चेस्ट पेन हो तो उसमें 3 तरह की दवाइयाँ होती है, एक एस्पिरिन होती है, एक क्लोपिडोग्रेल होती है और एक अटोरवास्टेटिन होती है। वो 3 दवाइयों का पैक होता है और वो उसे एक सलाह दी जाती है कि वो आप हमेशा अपने बैग में रखें, अपने साथ रखें। जब आपको ऐसा चेस्ट पेन जैसा महसूस हो, भले ही आपको लग रहा है कि वो चेस्ट पेन उसकी वजह से नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से नहीं है, पर अगर आपको डर है तो आप तुरंत उसे खा सकते हैं, उससे यह है कि आपका जो हार्ट का खतरा है वो टल सकता है।
1: खून पतला कर लें एकदम से,
0: बिल्कुल,
1: जो
0: एकदम से
1: थिकनेस
0: खून
1: आ रही है
0: पतला,
1: उसमें।
0: ज़रूर।
1: जी डॉक्टर साहब, बेचैनी भी रहती है इनमें। अच्छा, नींद का क्या रोल रहता है? क्या नींद अगर हम प्रॉपर नहीं ले रहे, देर रात तक जग रहे हैं, जैसा कि आजकल युवाओं में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, एक एक दो दो बजे तक तो नॉर्मल रूटीन है उनका, मतलब फिर सुबह लेट उठना, या फिर अगर जल्दी उठ के कहीं ऑफिस में जाना है या कोई क्लास ज़रूरी अटेंड करनी है, तो वो नींद में ही रहते हैं फिर, लेकिन सोना उनको लेट ही है।
0: बिल्कुल
1: ये जो
0: बिल्कुल,
1: दिनचर्या हो रही है युवाओं में, ये कैसे उनकी हेल्थ को प्रभावित कर रही है?
0: एक्चुअली क्या होता है कि हमारी सर्केडियन रिदम जिसे हम कहते हैं, नींद की स्लीप साइकिल होती है, उसमें अगर हम फिक्स रखेंगे, जैसे सोने का समय फिक्स और उठने का समय फिक्स अगर हम रखेंगे, तो उससे हमें क्या होगा कि तनाव जो हमारा है वो कम हो सकता है, जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो कहीं हद तक नींद से पूरा होता है, तो उसके लिए सोने का समय रखें। दूसरा, स्क्रीन टाइम, हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है उसकी वजह से जो हम सोने से पहले हम जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो चलाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारा स्लीप जो होता है शेड्यूल चेंज हो जाता है और डिले हो जाता है। कई बार आप देखिएगा, जैसे रात में अगर आप काम लेट तक काम कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटर पर, तो आपको 3 बजे तक, 4 बजे तक नींद नहीं आएगी। तो ये जो कम निंद्रा है, इसकी वजह से इसमें मानसिक तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और उसकी वजह से जो अंदर हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और

0: उसकी वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन मतलब जो आर्टरीज है उसका जो एंडो लेयरिंग है, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, जहाँ पे हमारा क्लॉट नहीं बनता है, वो डिस्टर्ब होके उसमें डिसफंक्शन होने की वजह से क्लॉट बनने की क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं।
1: कितने घंटे की नींद ज़रूरी है?
0: 7 से 8 घंटे अमूमन
1: कम
0: नींद
1: से कम लें
0: पर्याप्त है।
1: तो
0: बिल्कुल,
1: उसके लिए युवाओं को समझना होगा कि उन्हें जल्दी सोना ही है।
0: जल्दी सोना है, फिक्स समय पर सोना है और टाइमिंग उनका फिक्स होना चाहिए, और सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करना है।
1: बिल्कुल। अगर ये सिम्टम्स की बात हमने की, इलाज में आते हैं तो ज़्यादातर शुरुआती इलाज क्या रहते हैं?
0: शुरुआती इलाज जैसे मैंने अभी बताया आपको, मरीज हमारे पास आता है, हम उसका पहले ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी निकालने के बाद अगर ईसीजी में चेंजेस आते हैं तो हम उसको इमीडिएटली एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी करने पर हमारे जो नसें हैं, तो उसमें मूलतः दो तरह की नसें होती है, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, तो उन नसों में कितना ब्लॉकेज है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है। क्या हम स्टेंट से ठीक हो पाएंगे, क्या हमें बाईपास की ज़रूरत है, या फिर हमें सिर्फ दवाइयों पर रहकर ही हमारा काम हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये बेसिकली कार्डिक पूरा टीम अप्रोच होता है, वो हम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद आगे अगर स्टेंटिंग की ज़रूरत है तो हम इमीडिएटली स्टेंटिंग करते हैं, बाईपास की ज़रूरत है तो उसे पेशेंट को सर्जन के पास भेजते हैं हम, और दवाइयों पे है तो हम दवा लिख के उसे घर भेज देते हैं।
1: स्टेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, अच्छी क्वालिटी या ऐसा कुछ?
0: देखिए, तो इसमें ये स्टेंट का जो है, उसमें पहले ये होता था कि बेयर मेटल स्टेंट हमारे पास आते थे। अब उसके बाद अब जो स्टेंट आ रहे हैं वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट आ रहे हैं। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट से मतलब होता है कि जो स्टेंट होते हैं उसके ऊपर एक ड्रग होती है, और वो धीरे धीरे जो हमने हार्ट की वेसल पे जो स्टेंट को चिपकाया है वो हार्ट की वेसल में जाती है, जिससे वापस से खून का थक्का नहीं बने। तो ये जो स्टेंट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। पहले ये स्टेंट फॉरेन में ही बनते थे, यूएसए से आते थे, आजकल ये भारत में भी बनने लगे हैं और सब अच्छी क्वालिटी के हैं।
1: बाईपास में कैसे करते हैं इलाज डॉक्टर साहब?
0: बाईपास में एक तरीके का आप देखिए नया रास्ता बनाया जाता है, उसमें हम स्टेंट में क्या करते हैं, जो पुरानी वेसल्स होती है उसी को एक तरीके से खोल देते हैं स्टेंट लगा के, और ब्लड फ्लो हो जाता है। लेकिन बाईपास में क्या होता है, एक नया रास्ता बाहर से वेसल से बनाकर हार्ट के जो डिस्टल वेसल है वहाँ पर उसको ग्राफ्ट को लगा दिया जाता है, ताकि वो हार्ट सारे मसल्स पे ब्लड अच्छे से पहुंच सके,
1: और वो अब सुचारू रूप से काम कर सके
0: बिल्कुल
1: आगे।
0: सुचारू रूप से काम कर सके।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और आया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही ऐसे टाइप का भेजा है, फिर भी कोशिश करते हैं। ये कमल सुहाल का है, ये कहते हैं कि ये खून पतला करने की मेडिसिन नियमित रूप से लेते हैं, दिल को बहलाते भी रहते हैं, कसरत और योग भी करते हैं, चाय, इनका वज़न जो है वो 70 किलो है, चाय भी जो पी कम शक्कर की ये लेते हैं। और इसके अलावा इनका सवाल, योग करके हम अपने हृदय को बचा सकते हैं, तनाव और तंबाकू का सेवन निषेध रखें। मतलब ये कुछ जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, शायद उसमें से जो कहे ना सार निकाल
0: सार निकाल,
1: के ये अपने इसमें, पर ये पूछना इन्होंने क्या कहा, ये नहीं, इसमें इन्होंने सवाल नहीं लिखा है। नियमित रूप से पीटी टेस्ट हो रहा है, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हाँ, सवाल इन्होंने नहीं लिखा है डॉक्टर साहब। तो चलिए अब एक देख लेते हैं। अभी कुछ श्रोता तो हमारे गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजने लग गए हैं, तो उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं कि ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, ये हेलो डॉक्टर कार्यक्रम है। और अगर आप डॉक्टर रविराज सिंह से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक सवाल ये आया है कि भूपेश शाह जी द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी, 5 वेन ब्लॉकेज, पूरा ऑपरेशन कर उदयपुर आए, रेस्ट करो घर में ही, ऐसा बताया उनको, मेडिसिन और तरीका हार्ट को स्वस्थ रखें, जीवन में अपनाएं अच्छे। हाँ, यही एक्चुअली ये भी यही कहना चाहते हैं कि जो जीवन शैली है
0: बिल्कुल अपनी जीवन शैली सुधार कर हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक गीत यहाँ पे और हम श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर और सवाल लेते हैं।

0: डॉक्टर साहब, खाने पीने का जो है हमारे दिल से एक बहुत ही गहरा नाता है, और अक्सर जो बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, वो यही कही जाती है कि ना तेल घी को कम से कम इस्तेमाल करें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि तेल की मात्रा को खाने में कम कर लीजिए। तेल कैसे नुकसान करता है और कौन सा?
1: देखिए, इसमें पहले ये धारणा होती है हमारे कि कुछ तरह के तेल, जैसे आपने विज्ञापनों में भी देखा होगा कि ये तेल हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये इसी तेल का इस्तेमाल कीजिए, ये जो विज्ञापन, ये भ्रामक विज्ञापन होते हैं। हमें जनरली मिक्स्ड ऑफ ऑयल यूज़ करना चाहिए, मतलब हम हर तरह का ऑयल ले सकते हैं, पर मिक्स्ड ऑफ ऑयल लेंगे तो उसमें हमारे लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये कि कितनी मात्रा में ऑयल लिया जाए, तो ऑयल का बेसिकली ये रहता है कि जो हम जैसे बाहर जो हमारे तली गली चीज़ें जो होती है,
0: समोसे कचौड़ी
1: उसमें आप देखिएगा बार बार उसी तेल में उसको तला जाता है, तो जब बार बार तेल को गर्म ठंडा किया जाता है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो है कि मात्रा, जो हम घर में जो तेल ले रहे हैं उसमें भी अगर हम थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, कम का मतलब ये हर घर का आपका अलग अलग होगा कि कौन कितना तेल खाता है, तो उसमें हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कैसे कम करेंगे, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम तेल हो उतना अगर हम लें एंड मिक्स्ड ऑफ ऑयल लें, जिसमें हर तरह का ऑयल हो सकता है वो हम अगर लें तो हमारे हार्ट के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा जो है वो घी के लिए रहता है। घी वैसे बढ़िया माना जाता है, और घी को अगर आप रोटी पे लगा कर खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि आप घी को बिल्कुल आप आधा किलो
0: पंजाबी परांठे जैसे बटर और ये
1: नहीं, बटर का भी ये दिक्कत है कि आप देखेंगे कि जो बटर मिल रहा है मार्केट में वो बेसिकली बटर नहीं है, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्पफुल तो क्या मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो अपन ये ध्यान रखें कि वो जो बटर मिल रहा है वो सही में बटर है या नहीं, तो घर का अगर बटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
0: मलाई को मत के जो हम घी निकालते हैं और बटर निकलता है, हाँ, वो ज़्यादा यूज़फुल है,
1: वही ज़्यादा यूज़फुल।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आया है कि क्या रात को नींद, अच्छा इन्हें नींद नहीं आती है तो वो क्या करें, इनको सजेशंस चाहिए?
1: नींद के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो योग प्राणायाम से आप मानसिक तनाव कम करके नींद को कर सकते हैं, दूसरा स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, और तीसरा फिर भी अगर नींद नहीं आ रही तो चिकित्सीय सलाह लेकर कुछ दिनों तक के लिए दवाई लेकर और फिर धीरे धीरे

0: दवाई को हटाकर देखा जा सकता है।
1: वैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो एक शावर भी ले लेना चाहिए रात को, अगर गर्मी का मौसम है खासकर, क्योंकि कई बार क्या होता है पसीने और गर्मी की बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती,
0: उससे भी नींद नहीं आती। बिल्कुल बात आपकी सही है, ये सबका अलग अलग होता है अपना, किसी को शावर लेके नींद अच्छी आती है, किसी को म्यूजिक से नींद अच्छी आती है, किसी को किताब पढ़ने के बाद नींद अच्छी आती। तो ये सब आपको अपना देखना, वर्कआउट करना पड़ेगा कि मुझे नींद कब और किस एनवायरनमेंट में अच्छी आती है। किसी किसी को लाइट बंद करके नींद अच्छी आती है, किसी को बिल्कुल आवाज़ थोड़ी सी भी होगी तो नींद उड़ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें अपना वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें किस, हमारी आदतें कैसी है जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद ले पाएँ।
1: और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि यूरिन करके सोएं, ताकि आपको नींद
0: बार बार उठना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और किसी की अगर प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो तो फिर मेडिसिन ही ले रहे हैं।
0: हाँ हाँ
1: ठीक है। अगर इस पे आते हैं कि सरसों के तेल की बात करें,
0: बिल्कुल
1: सरसों का तेल कितना फ़ायदेमंद है कच्ची घानी का?
0: मैंने आपको यही बताया कि सारे तेल हम मिक्स, सरसों का तेल हो चाहे सोयाबीन का तेल हो चाहे आपके मूंगफली का तेल हो, मिक्सड ऑफ ऑयल इज़ बेटर। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक ही ऑयल यूज़ करें, आप मिक्स ऑफ ऑयल अपने किचन में रखें और हर तरह का ऑयल लें। हर तरह के ऑयल में अलग अलग चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो मिक्सड ऑफ ऑयल इज़ बेस्ट फॉर द बॉडी।
1: डॉक्टर साहब, हार्ट की सर्जरी हो गई या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब हो गया, खुल गई, अभी आप स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ एक प्रिकॉशंस आपको अब लेने ही हैं। दवाइयां तो लेनी ही हैं, उसके अलावा प्रिकॉशंस भी लेने हैं। जैसे बुज़ुर्गों में तो कहा जाता है, कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं अगर बहुत ज़्यादा एज होती है तो, कि भाई कभी कभी इनको कुछ थोड़ा बहुत दे दीजिए। मतलब रहता है ना कि लाइफ अभी कितने टाइम की रह गई है, तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कभार थोड़ा मीठा, कभी कभार थोड़ा तला हुआ। लेकिन हम युवा हैं, अभी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी है, हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस रखने चाहिए?
0: हमें प्रिकॉशंस, जैसे अगर अटैक के बाद जो होता है तो वैसे हम सलाह देते हैं कि हमें कितने कितने दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे शुरुआत के एक दो दिनों में हम अपने घर में टहलकर ठीक हो सकते हैं, फिर उसके बाद 5 से 7 दिन निकलने के बाद हल्का व्यायाम कर सकते हैं, और 1 महीने बाद हम फिर से अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि व्यायाम अच्छा करें, खान पान का ध्यान रखें। खान पान में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी नशा जैसे सिगरेट तंबाकू ये है वो हम कम से कम करें। हम नींद पूरी लें और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, इससे हमारा तनाव, मानसिक तनाव कम रखें और इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा।
1: काफ़ी चीज़ें तो आपने इसमें डूज और डोंट्स की बता दी डॉक्टर साहब, लेकिन समाप्त करने का टाइम हो गया है, तो कुछ और बातें जो रह गई हों और आप चाहते हैं कि युवा जो है, युवा वर्ग खासकर जो युवा आबादी है, इन बातों का ध्यान रखे, वो ज़रूर शेयर करें।
0: बिल्कुल, चलते चलते मैं आकाशवाणी के सभी युवाओं श्रोताओं से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका दिल सिर्फ आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, यह आपके परिवार की खुशियाँ हैं और आपके सुनहरे भविष्य की धड़कन है। 20 से 30 साल की उम्र ज़िंदगी बनाने की उम्र है, दिल की बीमारी से लड़ने की नहीं। एक स्वस्थ दिल किस्मत से नहीं, आपको रोज़ की आदतों से मिलता है। आज ही अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें, सिगरेट में के धुएँ में अपनी ज़िंदगी को मत उड़ाएं, तनाव को अपने उम्र पर हावी मत होने दें, रोज़ सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, अच्छी नींद लें और अपने शरीर के संकेतों को पहचानें। याद रखिए, युवाओं में होने वाले हार्ट अटैक से बचना पूरी तरह मुमकिन है, बशर्ते शुरुआत आपसे हो। आज अपने दिल का ख्याल रखिए ताकि कल यह आपका ख्याल रख सके। सजग रहें, स्वस्थ रहें।
1: बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ आपने कार्यक्रम का समापन किया है डॉक्टर साहब। वाकई में आप किसी भी आयु वर्ग के हों, दिल संबंधी रोगों को हल्के में ना लें, जागरूक रहें। एक छोटी खुशी भी जीवन की सबसे बड़ी दौलत हो सकती है, तो अपने बेशकीमती दिल पर व्यर्थ के तनाव का बोझ न डालें, सेहत से नाता जोड़ें, क्योंकि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है स्वस्थ दिल, और दिल को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है ईटिंग राइट, स्लीपिंग राइट एंड नॉट टेकिंग स्ट्रेस। डॉक्टर रवि राज सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ शामिल हुए आज के कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा की।
0: मुझे सुनने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
3: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं, एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भट्टजी की बाड़ी, उदयपुर। कॉल 02943535000।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जीबीएच जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल भेड़वा उदयपुर।
1: श्रोताओं हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राज सिंह। अगला कार्यक्रम हिट परेड लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
8: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: Radio Lake City. Lake City. Lake City.
11: FM रेडियो लेक सिटी पर समय हो चुका है हिट परेड का और आप एक बार फिर से हैं मीनाक्षी के साथ और आज आप सुनेंगे हेमा सरदेसाई की आवाज में कुछ हिट फिल्मी तराने। हेमा सरदेसाई के साथ ये आवाज़ उदित नारायण की फिल्म मन

श्रोताओं, 10:45 हो गए हैं और आपको अब बता देते हैं कि लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम के लिए 9462697568 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, क्योंकि समय जो है शुरू हो गया है और 11 बजे तक आप अपने संदेश हमें भेज पाएंगे, उसके बाद के संदेश हम शामिल नहीं करेंगे। और एक बार फिर से जो रिक्वेस्ट हम हर बार करते हैं, ज़रूर करेंगे कि ध्यान रहे, व्हाट्सएप आप 11 बजे तक ही करें और जो संदेश आप भेजें बहुत ज़्यादा नाम उसके अंदर ना लिखें, बार बार जगह का नाम ना लिखें, शॉर्ट स्वीट मैसेज भेजने का प्रयास करें। एक साथ बहुत सारे नाम अगर भेजते हैं तो उनको पढ़ने के चक्कर में कई बार ये होता है कि जो समय से श्रोता मैसेज कर रहे हैं उनके भी संदेश हम शामिल नहीं कर पाते हैं। तो कार्यक्रम की रोचकता और सुंदरता बनाए रखने की जो है आपसे सहयोग जरूर करते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो अब हिट परेड का अगला गीत फिल्म खुशी से। इस बार हेमा सरदेसाई के साथ आवाज़ के की।

खुशी फिल्म का गीत जो आपने सुना उसे संगीत से सजाया अनु मलिक ने, ये गीत भी अनु मलिक की धुन से ही सजा है। फिल्म का नाम बीवी नंबर वन। इस बार हेमा सरदेसाई के साथ आवाज शंकर महादेवन की।

हिट परेड का अंतिम गीत अशोका फिल्म से। अलका याग्निक के साथ आवाज हेमा सरदेसाई की।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वंस अगेन वेलकम दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और बिना देरी शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों को पूरा करने का सिलसिला, क्योंकि ये है लिसनर्स चॉइस। और पहला जो गीत आप तक पहुंच रहा है किनारा फिल्म से, पहले गीत सुनवाते हैं उसके बाद फरमाइशकर्ताओं के नाम पहुंचाएंगे आप तक।

भूपेंद्र सिंह लता मंगेशकर की आवाज़ में ये यादगार गीत जिसे सुनना चाहा है गुलाब बाग उदयपुर से सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स ग्रुप के अशोक जी, भंवर जी, श्याम जी, विजय सोयलका जी, अजब्बा जी, रिया सत जी और ये हैं इनके साथ सुशील जी, दिनेश मकवाना और ये हैं हरिओम, साथ में और नाम भी शामिल कर लेते हैं। ये हैं वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी, नाहर सिंह वारी, आयुर्वेदिक चौराहे से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा जी, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत, नक्श, उदयपुर वारियों की घाटी से ही, अब देखिए एक ही जगह से अगर आप बार बार जगह का नाम लिखते हैं तो मैसेज लंबे हो जाते हैं, एक ही जगह पे अगर सारे श्रोता हैं तो एक साथ ही नाम लिखिए, हरीश रावत, मीना रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री और यह हैं बापू बाजार से चेतना रावत, साक्षी रावत, गुनगुन भी इनके साथ में ही हैं और ये हैं साक्षी वारी भी साथ में, भावना रावत, नितिन रावत के नाम भी इन्होंने अपने मैसेज में लिखे हैं। इसके बाद ये हैं अनीता सालवी, पीयूष सालवी, शालू, लक्षिता, सुथारवाड़ा, उदयपुर के श्रोता। इसके बाद कुछ और नाम हम कार्यक्रम में जो शामिल कर रहे हैं वो आगे के मैसेज ले लेते हैं। तो ये हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू, गुड्डू मलोट से, और इनके साथ हैं ये सुनैना, राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय, अक्षिता, आलिंद बोहरा गणेश जी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला गीत जिगर फिल्म से।

चलिए श्रोताओं के नाम गीत में शामिल कर लें, तो ये हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। इसके बाद हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखे लाल, ये भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं और वहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं। और नाम शामिल कर लेते हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। कितना छोटा सा मैसेज और बहुत प्यारा सा मैसेज, करने के लिए आपका धन्यवाद। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं, आपका भी छोटा संदेश करने के लिए धन्यवाद। और ये हैं हरीश, मोनिका, भाविक, मीनाक्षी, आयुष, मंथन, प्रिशा, हर्षल, रौनित, तुलसी नगर भुवाणा के हमारे श्रोता हैं। इसके बाद अगला व्हाट्सएप ये पहुंचा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत, कमल साहनी का, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। और आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े हमें जवाहर नगर दुर्ग से मैसेज कर रहे हैं। अद्वेश शर्मा, अशोक, रोहित, सनम, ब्रजेश, हीरालाल, मुकेश, दिलमणि शर्मा, श्री कृष्णा, ये हमारे सिमरी डुमराव, जिला बक्सर, बिहार के श्रोता हैं। और अच्छे प्रोग्राम की ये तारीफ सुरेंद्र सोलंकी ने की है, वाकई में आप ही के पसंद के गीत इस प्रोग्राम में सुने जाएंगे। श्रीमती सुनीता पटवा, चंदूलाल, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और ये कुमारी कृष्टि पटवा, ये छत्तीसगढ़ से धरदेई सरगांव से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये है नीरज, दुर्वेश, प्रेमशंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा के शुदा। इसके बाद ये अगला व्हाट्सएप पहुंचा है मनीष यादव, ममता यादव और दर्शिल का, प्रताप नगर से। अगला ये संदेश है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का, जलालाबाद वेस्ट से। ये है मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, एनाया।

अक्सा इकरा मुस्तफ़ा कॉलोनी सलुम्बर के श्रोता है। और चलिए अब पहले अगला गीत सुनवाते हैं, फिर आगे नामों का सिलसिला शुरू करेंगे। मन की आंखें फिल्म का नाम।

ये है दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत और टप्पू, जय श्री कृष्ण भी इन्होंने लिखा। और साथ में ये अगला संदेश शामिल करते हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य का, ये बघेरा दुर्ग से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये रहमान कॉलोनी उदयपुर से रुखसाना बानो मोहम्मद इदरिश मुस्तफ़ा रज़ा का संदेश मिला है, और इन्हीं के साथ हैं अब्दुल समद फिरदौस बानो मोहम्मद अरसलन। चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको। फिल्म नाम सुनना चाहा है दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुमावत, और नमस्ते के साथ इनका मैसेज आया है, कुणाल इनके साथ में।

स्ट्रीट के श्रोता, इनका भी संदेश हमने शामिल कर लिया है। और इसके बाद ये हैं चित्तौड़ा हाउस से। देखिए, इनको सर को हमने कितनी बार बोला है कि आप इस तरीके से लंबे लंबे संदेश ना करें, पर ये ज़रूर करेंगे। आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे होने पर ये सबको बधाई भी देते हैं। और अब डॉक्टर इकबाल शका साहब, गौतम प्रकाश गांधी, सुरेश जी मेघवाल और नवनीत कुमार, मनीष कुमार, जो नाम इजीली पढ़े जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत बड़ा और मैसेज इन्होंने किया है, शैलेंद्र पालीवाल। इसके बाद ये हैं खम्मागणी के साथ रामदेव जी मंदिर से मनोज कुमावत, सुंदर देवी, ललित जी, अजय जी, विनायक, हिमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा। और इसके बाद काष्ठकला मार्ग से अमृत लाल जी, रेनू, रवि शंकर, हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी, सूरज, तसु, हेनू, बहुत सारे नाम इन्होंने लिख के भेजे हैं। आगे पढ़ते हैं, ये हैं रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी, महाराणा प्रताप कॉलोनी, उदयपुर से। अगला संदेश शामिल करें कार्यक्रम में, ये हैं विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग, राहुल, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता, वशिता, भवर, गौतम और ये रामद्वारा चौक धोली बावड़ी उदयपुर से हमें संदेश कर रहे हैं। देखिए, नाम अगर आप ज़्यादा भी लिख रहे हैं तो अगर उसको आप इजीली पढ़ने जैसा भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे की तरह और उसको संदेश को भेजते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। हसन, परवीन, इर्शद, जीनत, रफिया मल्ला तलाई से हैं। और इंतखाब, रेहाना, समिया, खुशी, नजीमा, सवीना, सेक्टर 12 उदयपुर के श्रोता हैं। इन्हीं के साथ हैं एजाज, रजिया, फैज़ा, अमर, ये उदयपुर के ही श्रोता हैं ब्लॉक बी से, उस्माना, हिना, इरफान, गुड़िया, निदा अली और दानिश आमिल, सज्जन नगर उदयपुर के श्रोता हैं। एक और संदेश शामिल कर लेते हैं फिलहाल, विनोद कालू, हसन बा, सुनीता, अनीता, जया, अरविंद उदयपुर रामपुरा से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। चलिए अब सुनवाते हैं आपको लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम का अगला गीत, और इस बार फिल्म का नाम करण अर्जुन।

पंकज उदास की आवाज़ में ये दिल छूने वाला गीत या गज़ल कहें इसे, और अब पसंद करता हूँ के नाम विजय व्यास, उषा, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद, नगर यूनिवर्सिटी रोड के श्रोता, हफीसा मिठाई, नफीसा, फखरून, यूनुस असगर, सकीना पटवा और जकिया बस्तीराम जी की बाड़ी से, विजय सिंह, दुल्हे सिंह, सागर सिंह राठौड़, कला ममता नेहा, ममता जी की खिड़की, मालदा

यह है कार्यक्रम लिसनर्स चॉइस और आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम में। और श्याम सुंदेशा शोभा प्रशांत प्रेरणा गांधीपुर बालोतरा से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। और इसके बाद ये हैं ललिता शर्मा बड़गांव से और ये लिखती हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 1 साल हो गया है और क्रैश में अपने जीवन को समाप्त करने वालों को शत शत नमन कर रहे हैं और उनकी याद में इन्होंने संदेश भी किया है। इसके बाद नाम शामिल करते हैं एमबी कॉलेज कुमारोगा भट्टा से मांगी लाल पूर्विया पुष्पा रानी और मोती चौहट्टा करजाली हाउस से माधवलाल सिल्ली और ये हैं कुमारोगा भट्टा से ही प्रजापति जॉनी भाई कुल्लड़ वाले। इसके बाद अगला संदेश शामिल करते हैं उदयपुर सेक्टर 9 से हरीश जिंगर मंजू जिंगर जय माधवी छुटकी किट्टू और इसके बाद यही इन्होंने संदेश वापस किया है। नरेश चित्तौड़ा अंजना मेघा कार्तिक देविक सेक्टर 4 उदयपुर से बहुत ही अच्छा मैसेज आपने किया। इसके बाद ये हैं जतिन और श्वेता सुहालका धारावती बाल कृष्ण जी सुहालका डिम्पी सुहालका ये हैं श्रीमती जी और सेठ जी विष्णु कुमार जी सुहालका उमराव सुहालका टेकरी से सेठ जी शांतिलाल जी सुहालका हैं और कमर कुमार जी हैं। इसके बाद ये इन्होंने नाम वापस भेजे हैं हमें। चलिए हमने आपका संदेश शामिल कर लिया है। लाल सिंह कुमावत मीना मोहित मीनाक्षी कोमल हिरादीवाड़ा रंगीला भैरू चौक से विनोद जी नीलम गजेंद्र जी कुमावत जया कुशल जी कोमल ये है सेक्टर 5 के श्रोता। इन्हीं के साथ हैं शिवलाल जी छगन देवी राजकुमार चारभुजा मंदिर खिरादीवाड़ा से किंजू कुमावत शौर्य कार्तिक दादाजी दादी जी इनके सेक्टर 5 उदयपार्क से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। बाबू भाई भारती देवी ये कैलाश मार्ग से संदेश पे जवाहर नगर उदयपुर से व्हाट्सएप कर रहे हैं और इन्हीं के साथ है कैलाश मार्ग से लाला सोनी अशोक कुमार और मोहन कसारा। अगला संदेश शामिल करें एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा और बबीता बोट निखिल कांगड़ा तन्वी बोट अंकित और यही इन्होंने नाम 3 बार हमें भेज दिए हैं। हिरण मगरी सेक्टर 5 शांति नगर से घनश्याम लाल बड़ारिया नानी बड़ारिया नंदनी पल्लवी कुसुम और बाबू भैया इनके साथ में हैं। ये शक्ति नगर उदयपुर से है संतोष खतूरिया काम्या विकास भानु खतूरिया हिताक्ष और सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से निकिता कशिश दीपक और मीर कीयू भी इनके साथ में हैं। कुदी उदय जोधपुर से हैं रवीना खतूरिया सवारा चंदेवानी और ये हैं भरत और कीयू जय सालवी संतोष खतूरिया यज्ञा सालवी ये इनके साथ हैं दूधतले के श्रोता हैं ये। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और अब फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, और अब श्रोताओं कर्ताओं के और पसंदकर्ताओं के नाम आप तक पहुंचाते हैं। ये हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर अरुणा, और चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन नीलेश, बुद्ध विहार बावली से मंगेश पानबुड़े भानुदास, और टेकड़ेवाड़ी नागपुर से सुशील येले मनीषा। आगे नाम शामिल करें, ये हैं श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, और ये हैं श्रीनाथ मार्ग खिरादीवाड़ा से सत्यनारायण कुरिल, पुष्पलता कुरिल, मिताली मिनाली और रोहन कुरिल। इसके बाद ये हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, नथाना पंजाब के श्रोता। इसके बाद ये है उदयलाल, कौशल्या, रिया, खुशी, तेजस, कुलदीप, सुनीता, ऊंटवाला, ऊंटवाल धान मंडी उदयपुर के श्रोता, उदयपुर रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी इनके साथ में हैं। अगला ये संदेश हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांचल राय का। नाम और लेंगे लेकिन पहले एक दूजे के लिए फिल्म का गीत।

ये कार्यक्रम है लिसनर्स चॉइस और हमारे पास 11 बजे तक मैसेज करने का ही फॉर्मेट इसमें होता है, लेकिन हमारे कुछ श्रोता अभी भी हमें मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो कृपया ना ऐसा करें क्योंकि वो हम नाम शामिल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अगले फरमाइशकर्ताओं के नाम पहुंचाते हैं आप तक। तीज का चौक से घनश्याम जी मारवाड़, उदयपुर कृष्णपुरा से आयुष गरिमा, राहुल पायल, कृष्णा, इंदिरा, मयंक, भव्य राज भवरीबाई, लेक सिटी श्रोता संघ के सदस्य भवरलाल जी नायक, उदयपुर तीज का चौक से घनश्याम जी मारवाड़ इनके साथ में है। अगला ये संदेश मालदा स्ट्रीट उदयपुर से पहुंचा है, हाकिम भाई, मोहन लाल जी, दीपक टेलर, नीलेश गहलोत और दादा का। इसके बाद ये है भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गांव मंडवा डूंगरपुर से। और इसके बाद ये भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार का संदेश हम तक पहुंच गया है। और ये हैं हजारेश्वर कॉलोनी से अमृत सेन और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। आपने भी बहुत छोटा सा मैसेज किया, धन्यवाद। ये इनका संदेश हम शामिल कर चुके थे, इन्होंने वापस भेज दिया है। अगला ये छत्तीसगढ़ से व्हाट्सएप आया है, गुलाब दास, मानिकपुरी, राजा दास और रानी उज्जवल इनके साथ में हैं। ये हैं खिरादीवाड़ा चौक से श्रवण कुमार, सुरेश कुमार जी, आपने भी छोटा सा मैसेज किया। ये हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर से, मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री से, अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर सेक्टर 5 से, राजकुमारी, विपिन गोस्वामी, चंदनवाड़ी प्रेमनगर से हैं और दुष्यंत जिज्ञासा ये भी बजाज नगर से हैं। तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना का भी व्हाट्सएप हमने शामिल कर लिया है, अशोक साधनवानी, देवी लाल चौधरी, मोहन कृष्ण और ये हैं हितेश, गौरव, कपिल खिलानी, भरत तेली, आबिद खान पठान और इनके सभी दोस्त, ये उदयपुर के ही सभी इनके फ्रेंड्स हैं। इसके बाद अगला संदेश शामिल करें मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता।

0: ता अंकिता प्रीति ऋतु संकल्प और इनकी प्यारी सी गुड़िया वेदा सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर से भी हैं ये। और अब अगला गीत बाजार फिल्म से।
1: रंग बिरंगी चूड़िया गोरे गोरे हाथा की सगाई आशिक के मन को भाई चूड़िया ले लो चूड़िया।
2: चूड़िया दिखाओ ना हमको धानी चूड़िया चाहिए।
1: धानी चूड़िया चाहिए? अब धानी चूड़िया कहाँ से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

लता मंगेशकर तलत अजीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे हैं ये बाज़ार फिल्म का गीत, और फरमाइशकर्ताओं के नाम शामिल कर लें तो श्रीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवनेश और इनका पूरा खत्री परिवार कल्लड़वास सांची ग्रुप से व्हाट्सएप कर रहा है। नागा नगरी से हैं अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू, सोनू और सैफान। इसके बाद ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप कर रहा है। इनका संदेश भी हमने शामिल कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। ये हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल इनके साथ में, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे, ये यवतमाल महाराष्ट्र से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद प्यार भरे नमस्कार के साथ ये हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। इसके बाद ये संदेश पहुंचा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना का, और नारायण इंगले मलकापुर से सोपान तायड़े, आशीष मुहरेकर इनके साथ में हैं, और नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल इनके साथ में। साथ में ही यही नाम इन्होंने वापस भी लिख दिए हैं। चलिए अगला संदेश नाम शामिल करें, उससे पहले सुनते हैं अगला गीत, और ये गीत है फिल्म प्रेम रतन धन पायो से।

0: चलिए अब एक संदेश सुनते हैं फिर अगला गीत।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: और अब रुदाली फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

चलिए आखिर के गीत तक पहुंचने से पहले कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं। हालांकि ये 11 बजे के बाद हम तक पहुंचे हैं, लेकिन थोड़े से कई बार समय का हो जाता है तो थोड़े से नाम हम शामिल कर रहे हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी श्रीगंगानगर राजस्थान से, और ये हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस जनकपुरी सहारनपुर से, और इसके बाद ये हैं तुलसीराम जी चौहान सूरजपुर से, गजेंद्र सिंह, भव्य राज भुरकिया खुर्द, भूपेंद्र सिंह शेर सिंह, गोपाल चौहान, मनोज बागड़ी, एडवोकेट महेश बागड़ी, ये हैं इनके साथ ही उमेश दाहिमा, ललित सिंह चौहान कांकरवा आयड़ से, इंदर सिंह राजावत सज्जन रोड से, दीपेश चौहान, और ये हैं विकास सिंह इनके साथ में। इसके बाद ये हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, और ये है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी, और इसके बाद ये है रोशनलाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैथविक और इनका पूरा सालवी परिवार। इसके बाद ये है बोहरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, ताहिर लड्डू, सिराज हबीब, और ये हैं चंडीगढ़ से डी टी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा। चलिए 11:05 तक हमने नाम शामिल कर लिए और उसके बाद के नामों के लिए हम क्षमा चाहेंगे, और सभी श्रोताओं का शुक्रिया, आभार कि आपने कार्यक्रम में हमें मैसेज किए और हमने आपके नाम शामिल किए हैं। आखिरी गीत सुनिए फिल्म गैंगस्टर से केके की आवाज़ में, और मीनाक्षी को दीजिए अनुमति, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 12:05 पर जुड़ेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के साथ और सुनिएगा वहां के कार्यक्रम शाम 5 बजे तक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं

0: निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत,

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

जमाने को दिखाना है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाएं। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदल कर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से ज़रा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगीं, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है यहाँ पर, कहीं

संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए, क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं, उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने, सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी या फिर कोई गाना या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे, एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्मपत्नी हैं, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद हैं। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा

अलिया है, तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है, एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोज़ाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है, तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस समय जहाँ से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहाँ से टिप्पणियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर आप आइए, और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएँ जन्म लेती हैं, सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है भाई वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई हमने आपसे कहानी पूछी थी, ज़रा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफ़र में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है, ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियाँ, दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं NCC कैंप गया था, रोज़ाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे, लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन ना कुछ न कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है, और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए, तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम

सुनवाते हैं फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में, और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से

भी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि ये वाला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और

0: एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख, और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, ज़रा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आँखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओह। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान

0: पुरी के बोलते शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: जाएंगे।
1: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, देव आनंद। और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी हैं। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी ज़बान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कर कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है। फिल्म बड़ा आदमी, और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे हैं लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
2: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा, जरा संभाल।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज़ में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए ज़रा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

0: गीत का।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: की क्या बात है वे? एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है, और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी, पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई, तो ठीक है अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़रा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियाँ बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मज़ा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के

0: बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौनो जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठी चार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता

0: गुप्ता ने कहा।
1: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
0: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ये 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन

0: सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया।

0: सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ

0: विविध भारती पर।
1: रे बापा मामा गागा।
0: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना। रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

0: आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी, मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी
1: जी।
0: जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी? अच्छा, मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: गुड़िया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी।
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, और खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,

0: जी
1: खाती, तो
0: जी
1: बस
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके
0: हाँ
1: बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है
0: मैं ना भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धनोजय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धनोजय सवाल।
1: झांसी।
0: धनोजय, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ
0: आप ही की, जी तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: दी, हाँ? ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
9: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
8: जी
9: बताइए।
8: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
9: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
8: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
9: वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
8: जी तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
9: हाँ
8: जी सुनाइए।
9: अपनी रचना सुनाती हूँ।
8: जी।
9: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको ना खुदा माना है, हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
8: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
9: सरस्वती चंद्र का

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा
1: हाँ।
0: चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में
0: जी

0: उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
1: जी,
0: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
1: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और
0: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
1: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
0: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
1: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
0: बहुत बहुत बहुत
1: जी, तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
0: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ
1: जी
0: पे।
1: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों के कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे हुआ करता था आपके घर में?
0: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
1: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
0: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है, तो देखिए ना बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
0: बहुत बहुत मैम
1: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
0: बहुत पसंद है, यस।
1: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कौन व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली
1: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
1: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
2: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
1: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
2: जी बिल्कुल।
1: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
2: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
1: क्या बात है।
2: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पेश और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
1: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
2: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
1: जी।
2: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
1: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
2: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
2: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
1: जी
2: इसका शीर्षक है आशिया।

0: आशियाना शीर्षक
1: जी। ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी

0: तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते।
0: जी तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल
1: अग्निपथ का,
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली,
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से है बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब।

0: करता है,
1: अरे वाह।
0: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
1: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
0: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
1: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
0: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
1: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
0: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
0: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
1: जी
0: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी
0: जी। सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है,
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी जी जी
0: जी। तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के, एक है, एक मेरा है।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके अब?
1: नहीं नहीं, छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी,
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे हाँ। गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नमी परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से। मैडम
0: जी, ये
1: जी,
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: साथियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228702888, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

चली गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत?

0: जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है।
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा, ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे बुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना?
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम?
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी।

मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें? मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे। फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था।

तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं

करती। वो भी क्यों आती? जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे, ये बता अरविंद कैसे

0: कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक?
0: हाँ भाई ठीक बस।
1: अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
0: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
1: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की गड़गड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो?
0: ठीक हूँ।
1: परेशान हो क्या?
0: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
1: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
0: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
1: अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि के आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे

0: हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5 बजे हैं और आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे मीडियम वेव और FM बैंड दोनों ही चैनलों पर।

0: टेंशन किस बात की होगी?
1: रास्ता भूलने की?
0: नहीं, लोगों को ये टेंशन होगी कि अब आर्ग्यूमेंट कौन जीतेगा, क्योंकि आजकल आधे लोग गूगल जानकारी लेने के लिए नहीं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए करते हैं,
1: और बाकी आधे लोग एक चीज सर्च करने जाते हैं और 2 घंटे बाद खुद भी भूल जाते हैं कि सर्च क्या करना था।
0: लेकिन मजेदार बात यह है वैदेही कि इन्फॉर्मेशन की इस भीड़ में भी कुछ कहानियां ऐसी होती है जो रुक कर सुनने लायक होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में सुनकर लगता है कि रियलिटी कभी कभी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है।
1: और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद रहती है लेकिन उनकी कहानी शायद हम जानते ही नहीं है। कभी कोई परंपरा समय के साथ एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है, कभी कोई संघर्ष प्रेरणा की मिसाल बन जाता है, और कभी किसी एक इंसान का हौसला लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन जाता है।
0: तो आज का सफर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां फैक्ट्स भी होंगे, स्टोरीज भी, और कुछ ऐसे नाम जिन्होंने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है, और कुछ ऐसे पहलू भी जो शायद रोज दिखाई देते हैं लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता।
1: मतलब अगले कुछ मिनटों में कहीं कल्चर मिलेगा, कहीं करेज, कहीं क्रिएटिविटी, और कहीं ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर लगेगा अरे ये तो हमें पता ही नहीं था।
0: तो जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज की ये बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं, कहानियों, अनुभवों और कुछ अनोखे नजरियों का भी होने वाला है। जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे वैद्य ही, और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहाँ यूथ की सोच है, आइडियाज है और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
1: तो चलिए शुरू करते हैं।

0: नन्हे हाथों में किताबें हों, सपनों की नई उड़ाने हों, न हो बोझ मजदूरी का, हर बच्चे की बस मुस्कानें हों।
1: बचपन खेलों में खिलता है, ज्ञान से जीवन मिलता है। आओ मिलकर ये प्रण ले, बाल श्रम का अंत करें।
0: आज 12 जून को पूरे विश्व में हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें उन लाखों बच्चों की याद दिलाता है जिनके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, लेकिन मजबूरी में वे काम करने के लिए विवश हैं।
1: बचपन जीवन का वो सुंदर और महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय है जब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए और अपने सपनों को आकार देना चाहिए। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लाखों बच्चे गरीबी, सामाजिक असमानता और अन्य कारणों के चलते बाल श्रम करने के लिए मजबूर है।
0: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाली यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लाखों लोगों को बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूक करना और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है।
1: बाल श्रम केवल बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं करता, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में भी बाधा डालता है। कई बच्चे कारखानों, दुकानों और खेतों में घरेलू कार्यों में लंबे समय तक काम करते हैं और इससे उनकी शिक्षा जो है वो पीछे छूट जाती है और उससे उनके भविष्य पे काफी गहरा असर पड़ता है।
0: जी हाँ, भारत सहित कई देशों में बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। सरकारें, सामाजिक संगठन और नागरिक मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार मिले।
1: बिल्कुल वैदेही। और बाल श्रम केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि हम किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हैं हमारे आसपास, तो हमें संवेदनशीलता के साथ उसकी सहायता करने और संबंधित अधिकारों की जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए।
0: आज के दिन आइए हम संकल्प लें कि हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करने में योगदान करेंगे जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सके।
1: क्योंकि बचपन काम करने के लिए नहीं, सीखने और सपने देखने के लिए होता है। और इस साल की जो हमारी इस दिन की थीम है वो है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रंस एंड डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स।
0: इस वर्ष की थीम खेलों की भाषा का यूज करते हुए उन मजबूत संदेश को देती है, जैसे किसी खेल में नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया जाता है, वैसे ही समाज को बाल श्रम को पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। हर बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल जाए, खेले, सीखे और सुरक्षित बचपन को जो है वो जिए, जबकि परिवारों को ऐसी समाज सम्मानजनक आजीविका मिले जिसमें बच्चों को वो अच्छा काम करना सिखा सकें और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा भी दे पाएं। तो चलिए अब आपको इसी टॉपिक पर सुनवाते हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ की आशिता जैन, जो कि एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बीच एक बातचीत।
2: श्रोताओ नमस्कार, आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आशिता जैन। आप समाजसेवी हैं और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आप कार्य करती हैं और साथ ही साथ बाल श्रम पर काफी विगत कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। इनसे हम आज जानेंगे कार्यक्रम में किस तरह से जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, इसके साथ साथ क्या कार्य इनकी संस्था द्वारा भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: धन्यवाद
2: आशिता। अगर हम बात करें जो विश्व बाल श्रम दिवस है, सबसे पहले ही बात करें कि ये दिवस हमें मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई।
3: सो मैं शुरू करूँ तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हर साल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि इस मुद्दे पे, जो बाल श्रम इतना गंभीर मुद्दा है, उस पे कैसे वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जाए और साथ ही साथ विभिन्न संगठन, सरकारें जो इसकी रोकथाम के लिए काम कर रही हैं, वो कैसे एक मंच पे आकर इसकी रोकथाम के लिए, इसके उन्मूलन के लिए काम कर सके। तो ये उद्देश्य था, उसी उद्देश्य के साथ 2002 से इसको हर साल मनाया जाता है।
2: अच्छी था, क्योंकि आप खुद युवा हैं और अगर हम देखा जाए तो जब युवा अवस्था से पहले, जिसको हम बालक की श्रेणी कहें या बालिका की श्रेणी कहें, किशोरावस्था कहें,

0: जब हम पढ़ने लिखने की उम्र होती है और इस समय में जब हम देखते हैं किसी को काम करते हुए कहीं चाय के ठेलों पर, कहीं होटल्स पर, कहीं फैक्ट्रियों में, तो आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश युवा है, युवाओं का देश है, हमें विकसित देश की तरफ, विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना है, और एक तरफ आपको जब ये पिक्चर दिखाई देती है तो कैसा महसूस होता है?
1: तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है कि जहाँ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं वहीं हमारी बहुत बड़ी आबादी आज भी इसमें लिप्त है, जिसके पीछे गरीबी, अशिक्षा और ऐसे कई कारण हैं जिससे हम लड़ सकते हैं और उन बच्चों को वापस मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। इसी को मैं इस बात के साथ भी जोड़ना चाहूँगी कि जैसे ILO हर साल एक थीम निकालता है, उस थीम के ऊपर उस पूरे वर्ष कार्य किया जाता है, तो इस साल का थीम बहुत मिलता जुलता है आपके प्रश्न से, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। मतलब जैसे खेल में, किसी खेल में हम रेड कार्ड दिखाते हैं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, वैसे ही रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, बच्चों की जगह हमारे कार्यस्थल पे नहीं बल्कि स्कूल में और खेल के मैदानों में है, और वहीं बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उनको एक इक्वल पे मिले और फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाए ताकि देश भी विकसित हो और साथ ही साथ बच्चों को बाल श्रम में ना जाना पड़े।
0: आशिता, आपने एक बात कही, गरीबी और अशिक्षा इसका एक तरीके से एक कारण है, लेकिन अगर हम देखें जो सरकारी प्रयास हुए हैं और सरकारों द्वारा शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है और जो शिक्षण संस्थान है, सरकारी स्कूल या विद्यालय जिनको हम कह रहे हैं, वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है, मिड डे मील की भी व्यवस्था की जा रही है उनके लिए, लेकिन फिर भी ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनती है कि जो बच्चे स्कूल में दिखने चाहिए वो हमें फैक्ट्री में, होटल्स में, रोड किनारे ढाबों पर या चाय के ठेलों पर साफ सफाई करते या काम करते हुए दिखते हैं? आप इसके पीछे क्या मतलब कारण मानते हैं? और
1: इसके पीछे दो कारण मैं मानती हूँ। पहला तो ये कि आज भी ग्रामीण परिपेक्ष में या वहाँ ऐसा माना जाता है कि जितने हाथ उतनी कमाई के साधन होंगे तो अच्छा रहेगा, जितना बड़ा परिवार। तो आज भी लोगों का ये मानना है कि भली शिक्षा मुफ्त कर दी गई है पर एक उम्र के बाद लड़के या लड़की से अपेक्षा की जाती है कि आप खुद ही अपने लिए कमाएं और खुद ही खाना लेकर आएं। इसलिए एक तो ये कहा गया है और साथ ही साथ आज जो मुफ्त शिक्षा है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए ही है, उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा नहीं है। और जब हम बाल श्रम की बात करते हैं तो अनुमान बच्चे 14 साल से ऊपर किसी फैक्ट्री में या किसी कार्यस्थल पे लगे हुए हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जहाँ फ्री शिक्षा है हमारे पास, वो एक एज तक ही है, सीमित है, तो उसके ऊपर के बच्चे कहीं ना कहीं इस साइकिल में फंस जाते हैं, और दूसरा जो एक सामाजिक सोच है वो इसको कहीं ना कहीं बल देती है।
0: तो आशिता, जैसे क्योंकि आप संस्था से जुड़ के हैं या फिर NGO के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब आप देखते हैं कि हाल ही में जैसे कई जगह से आपने फैक्ट्री में से आपने 70-80 बच्चों को छुड़वाया आपकी संस्था ने, और जब हम उनकी स्थिति को देखते हैं, कई लोग, उनके परिवार उनको पालने के समर्थ नहीं है, कई जगह ये भी है कि या तो वो बिल्कुल ही अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ पल बढ़ रहे थे, उनके माता पिता नहीं है, और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि उनका कोई भी नहीं इस दुनिया, बिल्कुल वो ऑर्फन है, अनाथ है। तो जब ऐसे बच्चे आते हैं बाल श्रम से मुक्त करवा के आप लाते हैं, तो किस तरह से आप उनकी टेक केयर करते हैं, किस तरह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस या फिर आपकी संस्था के द्वारा असिस्टेंट दिया जाता है और उनको वापस एजुकेशन से जोड़ा जाता है?
1: तो संस्था दोनों ही तरीके से काम कर रही है। पहले चरण में मैं बात करूं कि जो बच्चा आज ग्राम पंचायत में ही है पर उसकी कहीं संभावना हो सकती है कि वो आज से, अगर आज ही उसका संरक्षण नहीं किया गया तो 1-2 साल बाद शायद वो हमें बाल श्रम में मिलेगा, जो आप कह रहे हैं दादा दादी के साथ है जिसका एक कोई आय नहीं है, माता पिता नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं सरकार की। तो संस्था ये कोशिश करती है कि ऐसे बच्चों को ग्राम स्तर तक जाके, तो ऐसे जो एक्टिव सरपंच हैं, वार्ड पंच है, जो हमारी कमिटीज बनी हुई हैं, उनके माध्यम से हम उन बच्चों को चिन्हीकरण करें ग्राम पंचायत पे, और ताकि हम उनको सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ पाए। जो बच्चा स्कूल से वंचित है उसके हम रेगुलर काउंसलिंग करके स्कूल से जुड़वा पाए। तो एक तो है कि बच्चा सिस्टम में आने से पहले ही हम उसका संरक्षण कर दें ताकि उसको सिस्टम में आना ना पड़े, मतलब बाल श्रम में जाना ना पड़े। दूसरी जो आपने बात कही, बाल श्रम में जब वो बच्चा आ गया है और जब वो रेस्क्यू हो गया है, तो इसका हमारे यहाँ जो कानून है उसमें एक पूरी प्रक्रिया दे रखी है कि बच्चा जब रेस्क्यू होगा तो एक CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसके सामने वो प्रस्तुत होगा। तो जब वो प्रस्तुत होता है तो CWC उसका आकलन करती है कि इस बच्चे की क्या परिस्थिति है, कि घर वापस जाने भेजने लायक इसके लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो हमारे यहाँ जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं बच्चे को वहीं फ्री शिक्षा खाने के साथ वहीं रखा जाता है, और अगर बच्चे को देखकर लगता है CWC को कि नहीं अपने माता पिता के साथ जाकर रह सकता है तो फिर CWC उसको वहां

0: पर अपने पेरेंट्स के साथ भेज देती थी। उस केस में संस्था बच्चे का रेगुलर फॉलोअप करती है, स्कूल में उसको एनरोलमेंट करवाती है, माँ बाप की काउंसलिंग करती है ताकि वो बच्चा वापस उस बाल श्रम की साइकिल में ना पहुंच पाए।
1: अच्छा, तो अगर हम बात करें जिस बाल श्रम के दलदल में अगर बच्चा फंसा है और उस स्थिति पे अगर हम विचार करें तो उस समय क्या मना स्थिति होती है बच्चों की, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या फिर यूं कहें शिक्षा के स्तर पे वो ऐसी अवस्था से गुजर रहा होता है और वो शायद किसी को कह भी नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति से जब आप बच्चों को छुड़ा के लाते हैं तो किस तरह से आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वो क्या अपने साथ बीती हुई ऐसी क्या बातें बताते हैं जो सच में समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है?
0: सबसे पहले तो जब हम बच्चे को, हम जब भी किसी बच्चे को रेस्क्यू करते हैं या छुड़ाते हैं तो हम सबसे पहले हम उसे ये बताते हैं कि वो अपराधी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहला जो काउंसलिंग का पार्ट होता है वो यही होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप सही हैं, आपसे ये काम करवा रहे थे इसलिए आपको यहाँ से रेस्क्यू करके पढ़ाई से या किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना कि वो गलत नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत सहम जाते हैं, तो हम पहले उस पर काम करते हैं। कई कई बार हमने ऐसे बच्चे भी रेस्क्यू करे हैं जो इस स्थिति में थे जब 7-8 साल के थे, वो दो 3-4 साल से भेड़ बकरी चरा रहे हैं। जब हमने उनकी काउंसलिंग करी तो उससे पूछा गया कि कहाँ अच्छा लग रहा है, जंगल में जाके अच्छा लगता था क्या? जी हाँ, अच्छा लग रहा है। तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मुझे यहीं रहना है और मुझे जंगल में नहीं जाना है। तो ऐसी जो मनस्थिति जब सामने आती है तो हमें लगता है कि जो हम एक जो सोच है हमारी कि नहीं खुद कमाएगा और खुद खाएगा, पर अगर उस बच्चे से बात करके बैठ के बात की जाए तो ये पता लगता है कि नहीं, वो बच्चा सच में पढ़ना ही चाहता है और जो उसकी उम्र है वो खेलना ही चाहता है। तो इन दो तरीके से हम लोग उस पर।
1: एक बात पर अगर गौर किया जाए, ये देखा भी गया है, लिखा पढ़ा भी गया है कि आमतौर पर बाल श्रम की आड़ में यौन अपराध भी उनके साथ होते हैं, यौन हिंसा के भी शिकार हुए हैं कई बार, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो। तो ऐसी स्थिति में तो जब वो बच्चे को जब आप लेके आते हो, रेस्क्यू करके आते हो, तो वो बिल्कुल ही वो दुनिया से बिल्कुल कट चुका होता है और क्योंकि उसने एक अलग दुनिया देखी होती है वो बहुत सहम जाता है। क्या ऐसे केसेस भी सामने आते हैं और अगर आते हैं तो उस ऐसी स्थिति में आप किस तरह से उनको गाइड करते हो?
0: इस स्थिति में भी जो प्रक्रिया है वो अमूमन सेम ही रहती है, बट जब हम लीगल कार्रवाई में जा रहे हैं, जब FIR में जा रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है हम लोगों की, उसमें हम उस बच्चे से बातचीत करते हैं, उसमें जो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। तो वो बच्चा बताता है कि मैं इतने टाइम से यहीं हूँ, या बच्ची बताती है मैं इतने टाइम से यहीं हूँ, मैं रात को इतनी बजे तक काम करता था, इतना मालिक मेरे साथ मारपीट करता था, दुर्व्यवहार भी करता था। तो जब बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं तो वो अपने आप बताते हैं। तो जब हम FIR दर्ज करने जा रहे होते हैं तब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब चाइल्ड लेबर की FIR दर्ज हो रही है और अगर उसके साथ ऐसी कोई बात उसने काउंसलिंग में कही है जो सामने आई है, चाहे वो यौन शोषण की हो, तो FIR भी उसमें डले, ताकि एक कानूनी कार्रवाई भी ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ के लिए। तो हम वो बात करते हैं और साथ ही साथ जब बच्चा क्योंकि और सेंसिटिव हो जाता है तो उसकी फिर काउंसलिंग, जैसे अगर मैं यौन शोषण की बात करूं तो उसका फिर मेडिकल हो गया, उस बच्चे की काउंसलिंग हो गई, परिवार से जुड़वाना हो गया, और कहीं उसको मारपीट के निशान तो नहीं है, मेडिकल की केयर तो नहीं है। तो वो सारी जो कानून में लिखा है और साथ ही साथ संस्था जो काम कर रही है, उन दोनों को मुद्दे रखते हुए कि बच्चा कैसे कंफर्टेबल हो पाए और साथ ही साथ उसके साथ जो गलत हुआ है उसको कानून में भी रिकॉर्ड हो ताकि फ्यूचर में कम केसेस हो पाए।
1: अच्छा, अगर क्योंकि हम बाल श्रम निषेध की बात कर रहे हैं और कानून अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है और संस्थाएं और सरकारें अपना प्रयास कर रही है, लेकिन कोई आम व्यक्ति अगर किसी बच्चे को ऐसी स्थिति में देखता है और ये पाता है कि नहीं वो असहज है, वो 14 साल या उससे छोटा है या किशोर है, और अगर वो किसी को सूचित करना चाहे या कोई प्रशासनिक कदम उठाना चाहे तो कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं?
0: जो सबसे आसान ऑप्शन है, अगर आप किसी भी बच्चे को जो आपको देख के लगता है कि किसी असमंजस में है या किसी परेशानी में फंसा हुआ है, बिना उसकी उम्र जांचे आपको लगता है कि अगर ये मेरा बच्चा होता और ये गलत है, तो आप 10-9-8 पे आप कॉल कर सकते हैं। वो एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है जिसमें आपका, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपकी गोपनीयता भी रखा जाएगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। तो 10-9-8 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जहाँ आप बच्चे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने इस एरिया में बाल श्रम होते हुए देखा, या कोई भी, ये सिर्फ बाल श्रम के लिए नंबर नहीं है, कोई भी अपराध अगर बच्चे के खिलाफ होता हुआ दिखता है तो आप इस पर डाल सकते हैं। और फिर दूसरा, अगर आपके पास इतने संसाधन हैं और आप इतने सक्षम हैं तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, हम जैसी संस्थाएँ जो काम कर रही हैं जिनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, ऑफिस है, वहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं।
1: जाते जाते

0: में आशिता, जो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है उस पर जितने भी श्रोता या जो भी हमें सुन पा रहा है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और ये बाल श्रम के खिलाफ जो ये मुहिम है ये ज़्यादा सुदृढ़ हो सके?
1: बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम कोई किसी और बच्चे को काम करते हुए देख के तो हमें लगता है ठीक ही तो हो रहा है, कमा रहा है और खा रहा है, पर जब हम हमारे बच्चे को सोचेंगे तो शायद हम उस परिस्थिति में ना सोचें। तो जब भी आपको ऐसा कोई बच्चा बाल श्रम में करे तो उसको अपने घर के बच्चे की तरह सोच के देखें कि अगर हमारा बच्चा इस उम्र में काम करने जाएगा तो हमें सही लगेगा, और अगर नहीं तो वो बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है। आप उसे रिपोर्ट करें ताकि उस बच्चे को सरकार ने जो भी कानूनी व्यवस्था बनाई है उससे उसको सहायता मिल पाए।
0: तो आप थे आशिता जैन और सामाजिक कार्यकर्ता, और आज कार्यक्रम में आपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: तो अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह राठौर की आशिता जैन से बाल श्रम निषेध दिवस पर बातचीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वैद्य ही एक बात बताओ कि तुम्हारी वार्डरोब में कितनी साड़ीज होंगी?
3: मेरे पास तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मम्मी और नानी की साड़ीज भी जोड़ ली जाए तो शायद पूरा कबर्ड छोटा पड़ जाएगा।
2: और मजेदार बात तो ये है कि हर साड़ी के साथ एक कहानी हमें बिल्कुल फ्री मिलती है कि ये शादी में पहनी थी या किसी खास मौके पर ली थी। ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है। मतलब साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, उसके साथ हमारी मेमोरीज भी अटैच होती है।
3: सच में, और शायद इसी वजह से साड़ीज भी कभी जो है आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। ट्रेंड बदलते रहते हैं, डिजाइन बदलते रहते हैं, लेकिन साड़ी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं नहीं जाती है।
2: लेकिन वैद्य ही एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, हम साड़ीज को अक्सर ट्रेडिशन से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन आज साड़ी इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी बन चुकी है। इसके पीछे सिर्फ फैशन नहीं बल्कि लाखों आर्टिस्ट, वीवर्स, डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस जुड़ चुके हैं।
3: बिल्कुल, इंडिया में अलग अलग राज्यों की अपनी वीविंग ट्रेडिशंस हैं। बनारसी, कांजीवरम, बांधनी, पटोला, चंदेरी, महेश्वरी, हर साड़ी सिर्फ डिजाइन नहीं अपने क्षेत्र की पहचान भी लेकर चलती है।
2: और यही चीज तो इसे सबसे ज्यादा यूनिक भी बनाती है कि अगर कोई बनारसी साड़ी देखे तो इसे सिर्फ एक कपड़ा नहीं देखता, उसे बनारस की क्राफ्टमैनशिप दिखाई देती है। अगर कोई बंधानी देखे तो उसमें राजस्थान और गुजरात के आर्टिस्ट की ट्रेडिशनल एक आर्ट दिखाई देती है।
3: और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज भी कई साड़ीज ऐसी हैं जिन्हें बनाने में दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते और महीने तक का समय लग जाता है। यानी एक साड़ी के पीछे सिर्फ मशीन नहीं, किसी आर्टिस्ट की स्किल और मेहनत भी होती है।
2: लेकिन अब कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाती है। पहले साड़ी का जो बिजनेस था वो मोस्टली ट्रेडिशनल स्टोर्स तक ही लिमिटेड था, लेकिन आज यूथ इसमें इनोवेशन शुरू कर चुका है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो, ऑनलाइन बुटीक्स, कस्टमाइज्ड कलेक्शन और लाइव सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू साड़ी इंडस्ट्री अब पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुकी है।
3: और यही रीज़न है कि आज बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। कई लोग घर से स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कई डिजाइनर्स ट्रेडिशनल वीविंग को मॉडर्न फैशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और कई स्टार्टअप्स लोकल आर्टिस्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स से जो है कनेक्ट कर रहे हैं।
2: मतलब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ऑनेस्टली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल भी है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ नए इंडस्ट्रीज बनाना नहीं होता, पुरानी इंडस्ट्रीज को नए तरीके से आगे बढ़ाना भी होता है।
3: जी हाँ, और आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा साड़ी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। साड़ी इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है और 2029 तक इसे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है इसकी वो लगभग 1.58 बिलियन US डॉलर्स तक पहुँचने का अनुमान है। साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के मेजर हब्स में सूरत, जहाँ सिंथेटिक और डिजाइनर साड़ीज का हब है, वाराणसी की बात करें तो बनारसी सिल्क, कांचीपुरम जो है ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज के लिए जाना जाता है, और कोलकाता हैंडलूम साड़ीज में जो है शामिल है। ये इंडस्ट्री 10,000 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए चलाई जाती है, और आज इंडियन साड़ी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया के कई देशों में इंडियन कम्युनिटीज जो है ट्रेडिशनल साड़ीज को प्राउडली पहनती है। इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स में भी इंडियन टेक्सटाइल वर्क्स जो है काफ़ी अप्रिशिएट होते हैं।
2: बिल्कुल, और एक्सपोर्ट्स के जरिए इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुका है। सोचो कि एक आर्टिस्ट अपने लूम में बैठकर काम कर रहा हो और वही प्रोडक्ट हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में पसंद किया जा रहा हो, अपने आप में ही ये काफ़ी इंस्पायरिंग बात है।
3: लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह साड़ी इंडस्ट्री के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट्स की कंपटीशन, चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की डिक्रीजिंग नंबर्स जैसी बातें भी सामने आती रहती हैं।
2: सही कहा, और शायद यही वजह है कि हैंडलूम और ट्रेडिशन वीविंग को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ये एक बिजनेस नहीं है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है।
3: तो साड़ी सिर्फ एक आउटफिट नहीं है, ये कल्चर भी है, क्राफ्टमैनशिप भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी भी है।
2: और शायद यही वजह है कि साड़ी इंडस्ट्री को देखकर ये समझ में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा फैक्ट्रीज और मशीन्स की कहानी नहीं होती, वो कई बार उन हाथों की भी कहानी होती है जो परंपरा और आधुनिकता को साथ में जोड़ कर आगे बढ़ाते हैं। और शायद यही है उभरते भारत की खूबसूरती, जहाँ ट्रेडिशन भी साथ चलता है और इनोवेशन भी।

0: वैद्य ही हम सब ने सर्वाइवल स्टोरीज तो बहुत सुनी है, मूवीज में भी देखा है कि कहीं कोई इंसान मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता है और फिर हिम्मत के दम पर वापस लौट आता है। लेकिन कभी कभी रियल लाइफ में ऐसी कहानी होती है जिसे सुनकर व्यक्ति का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल चिन्मय, और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनकी कहानी ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्लेन क्रैश है, घना जंगल है, कई दिनों तक अकेले सर्वाइवल है, और सबसे बड़ी बात, ये सब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियलिटी है।
0: हम बात कर रहे हैं जूलियान कोएप्के की, जिनकी जिंदगी की कहानी आज भी दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है।
1: जूलियान का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1954 को पेरू में हुआ था। उनके माता पिता दोनों साइंटिस्ट थे और बचपन से ही उनका प्रकृति और जंगलों से गहरा परिचय था।
0: लेकिन 24 दिसंबर 1971 में उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जूलियान अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 से यात्रा कर रही थी, तभी विमान मौसम ख़राब होने की वजह से फंस गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। विमान पर बिजली गिरी और वो हवा में ही टूटने लगा। हजारों फीट की ऊंचाई से लोग नीचे गिरने लगे। उस हादसे में विमान के लगभग सभी यात्री मारे गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से जूलियान जीवित बच गई।
1: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

0: प्लेन क्रैश से बच जाना ही काफी नहीं था, जूलियान खुद को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच घायल अवस्था में अकेला पाती हैं। उनकी कॉलर बोन चोटिल थी, शरीर पर कई घाव थे और आसपास सिर्फ घना जंगल था। न कोई रास्ता, न कोई मदद और न कोई संपर्क।
1: और सोचो वैद्य ही, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे बड़े लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन जूलियान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने माता की और अपने पिताजी की एक बात याद रखी कि अगर जंगल में कोई छोटी सी धारा का पानी का रास्ता मिले तो उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वे इंसानी बस्तियों तक पहुंचती है। और यही सोचकर उन्होंने एक छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू कर दिया।
0: जी हाँ, और लगातार कई दिनों तक जूलियान जंगल में चलती रही। रास्ते में कीड़े मकौड़े, भूख, थकान और चोटें थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बारिश का सामना किया, जंगल के खतरों का सामना किया और उम्मीदों को जिंदा रखा।
1: और आखिरकार 11 दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद एक छोटी सी नाव में उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिले, जिन्होंने उनकी मदद की और बाद में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तरह जूलियान उस हादसे की एकमात्र सर्वाइवर बनी।
0: जी हाँ, इतनी बड़ी घटना के बाद भी जूलियान ने अपनी जिंदगी को सिर्फ उस हादसे तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने आगे पढ़ाई की और अपनी माँ की तरह बायोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी और बहुत सारे और भी टॉपिक्स पर रिसर्च किया और इन्वायरमेंटल साइंस में योगदान भी दिया।
1: यानी जिस जंगल ने उनकी परीक्षा ली थी, बाद में वही जंगल उनके अध्ययन और कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना। ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक बात है।
0: जूलियान की कहानी पर कई डॉक्यूमेंटरीज और बुक्स भी बनाई गई हैं। उनकी आत्मकथा व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई काफी चर्चित रही, जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को विस्तार से साझा किया।
1: और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं मानी जाती, बल्कि करेज और रिलायंस और होप की मिसाल के रूप में देखी जाती है।
0: जी हाँ, जूलियान की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और उम्मीद बनी रहे तो रास्ता निकल ही आता है।
1: और शायद इसी वजह से उनका नाम दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग सर्वाइवल स्टोरीज में लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मुश्किल समय में कभी भी हार ना मानने का जज्बा होता है, और यही जज्बा साधारण लोगों को असाधारण बना देता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वैसे ही फिल्मों की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प होती है। हर हफ्ते कुछ नई कहानियां बड़े पर्दे पर आती है, कुछ नए किरदार लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, अच्छी अभिनय कला की अहमियत।
4: बिल्कुल चिन्मय, नई फिल्में आती रहती है, नए सितारे भी आते रहते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम समय के साथ और बड़ा होता जाता है। आज हम पहले बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ चर्चित फिल्म रिलीजेस की और फिर मिलेंगे साउथ इंडियन सिनेमा की ऐसी दिग्गज अभिनेत्री से जिनका योगदान आज भी याद किया जाता है।
3: तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की नई फिल्मों से। रोमांस पसंद करने वाले दर्शकों के लिए है जवानी तो इश्क होना ही है। चर्चा में है वरुण धवन की इस फिल्म को लेकर यूथ ऑडियंस में अच्छा बज देखने को मिल रहा है और इसके सॉन्ग्स भी पहले से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
4: वहीं मैं वापस आऊंगा भी काफी चर्चित रिलीजेस में से एक मानी जा रही है। दिलजीत दोसांझ और सरवारी अभिनीत यह फिल्म भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित पीरियड ड्रामा है। इसके निर्देशन और संगीत को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।
3: साउथ सिनेमा के फैंस के लिए भी यह हफ्ता काफी खास होने वाला है क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 भी काफी चर्चा में है। पहले फिल्म की सफलता के बाद इस सीक्वल से लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ चुकी है। एक्शन और एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले दर्शकों के लिए इस फिल्म पर काफी नजर रहेगी।
4: अगर हॉरर योनर की अगर हम बात करें तो हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी रिलीज होने वाली है। विक्रम भट्ट की फिल्मों में अपना जो है अलग ऑडियंस बेस हमेशा से रहा है और यह फिल्म भी सस्पेंस और हॉरर का मिश्रण लेकर आ रही है।
3: इसके अलावा कंगना रनौत की अभिनीत भारत भाग्य विधाता भी काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान अस्पताल कर्मचारियों के साहस और संघर्ष की कहानी को सामने लाती है।
4: और साथ ही गवर्नर द साइलेंट सेवियर भी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यानी इस हफ्ते रोमांस, एक्शन, हिस्ट्री, हॉरर और ड्रामा लगभग हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद जरूर है।
3: अब वैसे ही जब नई फिल्मों की बात हो रही है तो उन कलाकारों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। साउथ इंडियन सिनेमा में भी एक ऐसा ही नाम है जो है शारदा।
4: शारदा, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बहुत ही नोन है और आज तक भी याद किया जाता है। शारदा का वास्तविक नाम सरस्वती देवी था। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। अपनी दमदार अभिनय क्षमता के कारण साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई।
3: उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल तक सीमित नहीं रही, उन्होंने ऐसे किरदार भी निभाए जो कि भावनात्मक रूप से मजबूत थे, जिनमें अभिनय की गहराई उनकी दिखाई देती है। यही कारण है कि दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षकों ने भी उनके काम को खूब सराहा।
4: और चिन्मय, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो शारदा उन चुनिंदा भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि अपने आप में उनके अभिनय स्तर को दर्शाती है।
3: बिल्कुल, उस दौर में नेशनल अवार्ड जीतना किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को माना जाता था और इससे शारदा ने यह सम्मान नहीं एक बार नहीं 3 बार प्राप्त किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी प्रभावशाली रही होगी।
4: उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें महिला किरदार कहानी का केंद्र होते थे। उस समय यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी क्योंकि अधिकांश फिल्मों में महिलाओं की भूमिका सीमित होती थी, लेकिन शारदा ने अपने अभिनय से यह साबित किया कि मजबूत कहानियां और मजबूत महिला दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है।
3: फिल्मों के अलावा उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी उनका जो योगदान दिया उसके बाद वे राज्यसभा की सदस्य भी रही, यानी उन्होंने कला और समाज दोनों क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई।
4: आज भी जब साउथ इंडियन सिनेमा की महान अभिनेत्रियों की बात होती है तो शारदा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। नई पीढ़ी भले ही उन्हें उनकी फिल्मों के माध्यम से जानती हो, लेकिन उनका योगदान जो है इंडियन सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है।
3: तो एक तरफ नई फिल्में जो दर्शकों के सामने नई कहानियां लेकर आ रही है और दूसरी तरफ शारदा जैसे कलाकार जिनका नाम आज भी लोगों को प्रेरित करता है।
4: क्योंकि सिनेमा की असली खूबसूरती यही है, नई कहानियां आती रहती है लेकिन बेहतरीन कलाकार हमेशा याद रहते हैं।

0: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां किसी महल या युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक छोटी सी डायरी के पन्नों में लिखी जाती है।
3: ऐसी ही एक कहानी है एनी फ्रैंक की, एक ऐसी किशोरी की जिसने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेरित किया।
2: एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी डायरी और कुछ ऐसे शब्द जो आज भी पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। एनी फ्रैंक का बर्थ 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकेट सिटी में हुआ। वे एक यहूदी परिवार से थी। जब जर्मनी में नाजी शासन के दौरान यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा तो उनका परिवार नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम शहर में जाकर बस गया।
3: लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां भी हालत बिगड़ने लगे और 1942 में एनी फ्रैंक का परिवार एक गुप्त स्थान पर छिपकर रहने के लिए मजबूर हो गया। अपने 13th बर्थडे पर एनी को एक डायरी गिफ्ट में मिली थी। छिपे हुए जीवन के दौरान उन्होंने उसी डायरी में अपने विचार, भावनाएं, सपने, डर और अनुभव लिखने शुरू किए।

0: कर बस गया।
1: लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां भी हालत बिगड़ने लगे और 1942 में एनी फ्रैंक का परिवार एक गुप्त स्थान पर छिपकर रहने के लिए मजबूर हो गया। अपने 13th बर्थडे पर एनी को एक डायरी गिफ्ट में मिली थी। छिपे हुए जीवन के दौरान उन्होंने उसी डायरी में अपने विचार, भावनाएं, सपने, डर और अनुभव लिखने शुरू किए। उन्होंने लिखा कि कैसे वे बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसती थीं, अपने दोस्तों को याद करती थीं और एक सामान्य जीवन जीना चाहती थीं।
0: बिल्कुल, एनी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं लिख रही थी, वे एक किशोरी के रूप में अपने जीवन, अपने भविष्य और अपनी पहचान की खोज कर रही थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी डायरी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जब सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। ये शब्द आज भी दुनिया के लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: लेकिन अगस्त 1944 में किसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना मिलने के बाद जो है, एनी और उनके सभी छिपे लोग जो हैं वो पकड़े गए थे। उन्हें विभिन्न यातना शिविरों में भेज दिया गया। एनी और उनकी बहन को जर्मनी के ब्रगेन शिविर में जो है वो रखा गया, जहां 1945 की शुरुआत में बीमारी और कठिन परिस्थितियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय एनी केवल 15 वर्ष की थी।
0: युद्ध समाप्त होने के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में लौटे। उन्होंने एनी की डायरी मिली, जिसके बाद उसमें उसे प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई और दुनिया के 70 से अधिक भाषाओं में अनुवादित की गई। आज एनी फ्रैंक की डायरी केवल एक पुस्तक नहीं है, यह इतिहास का जीवित दस्तावेज है। यह हमें युद्ध की भयावहता, भेदभाव के खतरों और मानव अधिकारों के महत्व को याद दिलाता है। दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स एनी की कहानी पढ़ते हैं और उनसे साहस, आशा और मानवता का पाठ सीखते हैं।
1: जी हाँ, तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और अब हम बात करेंगे भारतीय महिला हॉकी की, एक ऐसी खिलाड़ी की जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। हम बात कर रहे हैं सबा अंजुम करीम की।
0: 12 जून को 1985 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कलाबाड़ी क्षेत्र में जन्मी सबा अंजुम का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। बचपन से ही उन्होंने खेलों में रुचि रखी और हॉकी में अपने जीवन को चुना। उस समय लड़कियों के लिए खेलों में आगे बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन सबा ने हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से किया।
1: सबा अंजुम ने अपनी प्रारंभिक हॉकी शिक्षा प्रसिद्ध हॉकी प्रशिक्षक जो है तनवीर अकील्स के मार्गदर्शन में प्राप्त की। उनकी प्रतिभा जल्द ही सबके सामने आने लगी और कम उम्र में ही उन्होंने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में स्थान बनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त किया। साल 2002 में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। मैनचेस्टर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में वे भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे युवा खिलाड़ी थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय महिला हॉकी को नई पहचान दी, बल्कि सबा अंजुम को भी देश भर में लोकप्रिय बना दिया।
0: अपने करियर के दौरान उन्होंने एशियाई खेलों, एशियाई कप और जूनियर विश्व कप और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी तेज गति, शानदार ड्रिबलिंग और आक्रामक खेल शैली के कारण वे टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक मानी जाती थी। उन्होंने लगभग एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी सेवाएँ दी और अनेक महत्वपूर्ण जीतों में अपना योगदान दिया।
1: सबा अंजुम की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उन्हें खेल जगत के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2015 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि भारतीय महिला खेलों के बढ़ते महत्व का भी प्रमाण है। खेल के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में कार्यरत हैं और युवाओं के खेलों के प्रति उनका प्रेरित करने का आज भी जो जर्नी है वो जारी है और बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है।
0: सबा अंजुम की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम किसी लक्ष्य की ओर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो वो कभी असंभव नहीं रहता। उन्होंने यह साबित किया कि छोटे शहरों और साधारण परिवार से आने वाली बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा सकती है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ आज का दिन जो है वो बहुत खास है चिन्मय, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसीलिए अब हम बात करेंगे आज के दिन 1968 में जन्मी विमेंस बॉक्सिंग की एक ऐसी लेजेंड की जिन्होंने इस खेल को नई पहचान दिलाई।

0: आई। जी हाँ, क्रिस्टी मार्टिन, जिन्हें दुनिया भर में द कोल माइनर्स डॉटर और महिला मुक्केबाजी की पाइनियर के रूप में जाना जाता है।
1: वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में जन्मी क्रिस्टी मार्टिन ने उस दौर में बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया और जब यह खेल मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन क्रिस्टी ने अपने डिटर्मिनेशन, करेज और फाइटिंग स्पिरिट से इस सोच को बदल दिया।
0: 1990 के दशक में क्रिस्टी मार्टिन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एग्रेसिव स्टाइल और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 1996 में उनका मुकाबला माइक टायसन के साथ हुआ, और जो कि एक बड़े बॉक्सिंग इवेंट में शामिल किया गया। यह विमेंस बॉक्सिंग के इतिहास में एक लैंडमार्क मोमेंट था, क्योंकि पहली बार किसी महिला बॉक्सर को इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता मिली थी। क्रिस्टी मार्टिन ने अपने करियर में कई चैंपियनशिप्स भी जीती और दुनिया को दिखाया कि विमेन एथलीट्स जो हैं भी बॉक्सिंग रिंग में उतरना चाहती हैं और उनकी ताकत, स्किल और पैशन के साथ मुकाबला कर सकती हैं जितना कोई और खिलाड़ी कर सकता है।
1: लेकिन उनकी जर्नी केवल सक्सेस की कहानी नहीं है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस का सामना किया। घरेलू हिंसा जैसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि लाखों महिलाओं के लिए करेज और रेसिफेंस की मिसाल बन गई।
0: आज क्रिस्टी मार्टिन सिर्फ एक बॉक्सर नहीं बल्कि एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ और परसीवरेंस का एक प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है।
1: हम क्रिस्टी मार्टिन को उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स के लिए सैल्यूट करते हैं। उनकी जर्नी आगे वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेंगी।
0: और अब दे देते हैं हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आज से इंग्लैंड और वेल्स में आगाज हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट में 12 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और भारत अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा।
1: बिल्कुल, इसी के साथ भारतीय खेल जगत के लिए एक दुखद समाचार भी है। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। उन्होंने भारत को कई बार अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाकर ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर के कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: साथ ही क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है। मेजबान मैक्सिको ने उद्घाटन मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच में 3 रेड कार्ड भी देखने को मिले जिससे मुकाबला काफी चर्चित रहा।
1: इसी के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मैं था आज आपके साथ आपका दोस्त चन्मय मिनारिया, मेरे साथ थी वैदेही। नमस्कार।

FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों

0: के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 6:05 हुए हैं और अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। मैं हूँ आपके साथ में डिम्पी और अगले कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा गाने। कार्यक्रम का नाम है रूबरू। तो आज के इस कार्यक्रम में हम रूबरू होंगे उन गीतों से जिनमें सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। सारंगी वैसे तो शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है, लेकिन आप जरा घबराए नहीं, क्योंकि गाने होंगे वही जो आपके पसंद के हैं। यानी कि फिल्म संगीत में जब सारंगी का प्रयोग हुआ तो वो किस प्रकार के गाने बन पड़े, उनकी चर्चाएं भी होंगी और उन गानों को हम सुनेंगे भी। तो सबसे पहले बातें तो होती रहेंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस गीत के साथ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, सारंगी की जब हम बात कर रहे हैं तो सारंगी मुख्य रूप से राजस्थान के लोक संगीत का वाद्य यंत्र माना गया है, लेकिन इतिहासकारों और संगीतकारों का मानना यह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी ये प्राचीन वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान से ताल्लुकात रखता है। राजस्थान में पारंपरिक लोक वाद्य रावण हत्था की तरह ही सारंगी होता है और वो वहीं पर विकसित भी हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वो शास्त्रीय संगीत का एक अहम हिस्सा बन चला। लोक जातियों में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहता है। आप आज भी देखेंगे कि राजस्थान की बहुत सारी ऐसी धुनें और बहुत सारे लोकगीत हैं जिनमें सारंगी की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। ये एक ऐसा पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र होता है जिसकी आवाज़ जो है वो ऐसी मानी जाती है कि इंसानी आवाज़ के सबसे समीप होती है। बातें फिलहाल सारंगी के बारे में और भी होंगी, लेकिन आइए देखते हैं कि इस अगले गीत में किस प्रकार सारंगी का प्रयोग हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पिछला गीत जो आपने सुना था चलते चलते, उस फिल्म के गाने में शुरुआती दौर में यानी कि मुखड़े से पहले ही सारंगी को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। उसी तरह से अगला जो गीत हम सुनने वाले हैं इसमें भी सारंगी का प्रयोग वोकल्स के साथ में यानी कि जो गायिका हैं उनकी आवाज़ के साथ साथ एक एक करके प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सारंगी इस गाने में आया। ये जो धुन अभी आपने सुनी ये सारंगी की धुन थी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीत के कुछ ऐसे नगमों की जिनमें सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया। तो हम पहले सारंगी की बनावट की बात करें तो ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि धनुष के प्रकार के आकार का एक तरीके से मान सकते हैं। लकड़ी का बना हुआ ये वाद्य यंत्र होता है और इसकी गर्दन कुछ छोटी होती है और आकार लगभग आयताकार जैसा होता है। खास बात यह है कि इसकी बॉडी पर आमतौर पर लकड़ी के एक ही टुकड़े से पूरी तराश कर ये बनाया जाता है, यानी कि एक ही पूरा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है और उस एक ही टुकड़े को सारंगी का आकार देकर इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। अब बात कर रहे हैं गीतों की, तो आइए देखते हैं कि इस अगले गीत में पूरे ही गाने में आपको सारंगी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और आपको बताएं कि हृदयनाथ मंगेशकर ने इस गाने का संगीत दिया था। तो इस गीत में शुरू में, यानी कि मुखड़े से पहले जो प्रील्यूड आता है, जो कि एक इंट्रोडक्टरी संगीत हम जिसे कह सकते हैं, उसमें भी वायलिन के साथ साथ वाद्य यंत्र यानी कि सारंगी

होता है और बीच बीच में यानी कि गाने के अंतरों के बीच में जिसे हम इंटरल्यूड कहते हैं उसमें भी सारंगी हमें सुनाई पड़ती है। आइए देखते हैं कि कैसे इस गीत में प्रयोग किया गया।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, आपको बताएं कि राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ लंगा जाति जिस प्रकार से गायन वादन किया करती है, तो उनका ये विशेष वाद्य यंत्र होता है एक, जो कि इंसानी आवाज को एक सहारा यानी कि उसके साथ साथ संगत करता हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार के धुनें निकलती हैं कि सीधा दिल को छू लेती है। लंगा, मांगनी, अर्जोगी, मिरासी, ये सभी जो लोक कलाकार हैं, ये सारंगी का प्रयोग करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अब सारंगी के वैसे मुख्य प्रकारों की बात करें तो एक सिंधी सारंगी मानी जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की ओर यानी कि जैसलमेर बाड़मेर की तरह जो हम आपको बता रहे हैं वहां पाई जाती है। एक गुजरातन सारंगी होती है, जो कि होती राजस्थान में ही है, लेकिन वो ढोली और मांगनियार जो कलाकार होते हैं वे उसे बड़े चाव से बजाते हैं, और ये सिंधी सारंगी से कुछ छोटी होती है आकार में। मानव की आवाज के सबसे समीप इसे माना गया है, यानी कि हूबहू मर्म स्पर्शी धुनें इस प्रकार निकलती हैं सारंगी से कि ऐसा लगता है इंसानी कंठ के मुंह से इस तरह की आवाजें निकल रही हैं। तो सारंगी की बातें तो आगे और भी होंगी, लेकिन फिलहाल देखा जाए कि ये अगला जो गीत है ये किस प्रकार सारंगी को दिखाता है। इस गीत में विशेष रूप से एक प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने स्वयं ही सारंगी के कुछ अंश दिए थे, और उन्होंने अलग अलग टुकड़े सारंगी के बजाए जो कि इस गीत में जोड़े गए। और ये इस गीत में जो हम सारंगी सुनेंगे वो वोकल में यानी कि गायिका के कंठ के साथ साथ में पीछे सारंगी आपको सुनने को

20वीं सदी के सबसे महान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाने वाले सारंगी वादक पंडित राम नारायण, जिनका जन्म भी राजस्थान के उदयपुर में ही हुआ था, उन्होंने सारंगी को पूरी दुनिया में एक एकल वाद्य यंत्र के रूप में पहचान भी दिलाई।

जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं जिनमें सारंगी का प्रयोग हुआ है। आपको बताएं कि इनमें से कई सारे गीतों में पंडित राम नारायण ने स्वयं उस दौर में सारंगी स्वयं बजाकर उन गीतों को अमर किया।

अक्सर किसी गाने के पीछे गायककार की आवाज़ तो हमें बहुत अच्छे से सुनाई देती है, लेकिन उसके पीछे की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का एक साथ प्रयोग होता है और उन सभी की जो मेलोडी बनती है, आपस में धुन निकल कर आती है, वो ही हमें एक खूबसूरत सा एहसास कराती है और वही गाने को सुंदर बनाती है। पता ही नहीं चलता कितने सारे वाद्य यंत्र उसमें प्रयोग किए गए हैं। ऐसा ही पिछले गीत में जो भी हमने सुना, वादा तेरा वादा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और इस गीत में दो अंतरों के बीच में जो एक धुन आई थी, जिसे हम इंटरल्यूड कहते हैं, उसमें सारंगी का प्रयोग था। अगला गीत जिससे हम सुनने वाले हैं, उसकी बात ये देखी जाए तो गाने से ठीक पहले ट्रैक की शुरुआत से ही सारंगी का प्रयोग है इसमें, जो कि अकेला एक वाद्य बजा है इस पूरे गाने में। उसके बाद में धीरे धीरे जो जैसे गाना आगे बढ़ता है, उसमें बीच बीच में भी पूरे गाने में सारंगी का मुख्य रूप से प्रयोग है। संगीत दिया है नौशाद ने, आइए सुनते हैं ये गीत कौन सा है।

श्रोताओं, अब तक तो हम बात कर रहे थे पुराने गीतों की, लेकिन आप देखिए कि जो नए दौर के गीत आए उनमें भी सारंगी का बहुत खूबी से प्रयोग किया गया। एक ऐसा गीत जो आपको अब अगला सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत के जितने भी वर्जन्स बने, यानी इस फिल्म में इसी गीत के 3-4 अलग अलग प्रकार हमें सुनाई पड़े हैं और उन सभी गीतों में सारंगी का प्रयोग हुआ। वैसे इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया था उत्तम सिंह ने, और उन्होंने इसमें एक ट्रेडिशनल टच देने के लिए और साथ ही साथ इसको लोक गीत से मिलता जुलता बनाने के लिए सारंगी, बांसुरी और ढोलक का प्रयोग किया था। उसी में से एक गीत आइए सुनते हैं, जिसमें आपको भी अब शायद सारंगी की आवाज़ बहुत ही ध्यान से पहचान में आ जाएगी।

हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं ऐसे गीतों से जिनमें सारंगी वाद्य का प्रयोग हुआ। कार्यक्रम का नाम भी रूबरू, और आप सुन रहे हैं FM रेडियो लेक सिटी। सारंगी का वाद्य यंत्र जिसमें हमने आज बहुत सारी बातें तो की, लेकिन अब जो लेटेस्ट गानों की बातें चल रही हैं, तो पहले हम ये बता दें कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के संगीत निदेशक हैं जिन्होंने सारंगी को अपने गीतों में मुख्य रूप से प्रयुक्त किया था। नौशाद अली की बात करें तो एक गीत हमने सुना ही था, गंगा जमुना का दो हंसों का जोड़ा, और उसी के बाद में मुगले आजम में तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, प्यार किया तो डरना क्या, जिनमें स्वयं पंडित राम नारायण ने सारंगी दी। उसी प्रकार मदन मोहन ने भी अपनी फिल्मों में सारंगी का प्रयोग किया, जिसमें से चोरी चोरी फिल्म का रसिक बालमा या दस्तक फिल्म का बैया न धरो ये गीत हो गए। उसी प्रकार खयाम ने भी दिल चीज क्या है और इन आँखों की मस्ती के, जो कि उमराव जान के गीत थे, इनमें सारंगी का प्रयोग किया। और फिर जब हम बाद के गीतों की बात कर ही रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का मैंने आपको एक गीत सुनवाया, और अब जो अगला गीत है वो हम सुनने वाले हैं। इसमें मिथुन ने संगीत दिया, और देखते हैं कि किस प्रकार दो अंतरों के बीच में सारंगी का प्रयोग हुआ है। आवाज़ है रूप कुमार राठौड़ की।

ये जो धुन अभी आप सुन रहे थे, ये धुन थी सारंगी वाद्य की। अब आगे बात करते हैं तो 90 और उसके बाद के दशक यानी कि 2000 के दशक की शुरुआत में, जहां पर बॉलीवुड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर की तरफ बढ़ चुका था, वहीं पर एक ऐसे संगीत निदेशक जिनका नाम है इस्माइल दरबार, उन्होंने इसके खिलाफ जाकर वही 100 कलाकारों का एक विशाल क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा का समूह बनाया और लाइव रिकॉर्डिंग की। और उसी का एक प्रमाण है ये अगला गीत, जिसमें सारंगी स्वयं पंडित क्षमा कीजिएगा सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान ने दिया।

जब भी किसी संगीतकार को पर्दे पर असीमित दर्द, गहरा शोक, विरह या फिर एक इंसानी आवाज़ के सबसे करीब कोई वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करना हुआ या फिर साथी रूहानी सूफी तड़प को दिखाना हुआ तो सारंगी उनकी पहली पसंद बनी और यही आज हमने इस कार्यक्रम में देखा, यानी कि रूबरू हुए हम आज उन गीतों से जिनमें सारंगी का प्रयोग था। हमने बात की कि सारंगी का जो ये वाद्य यंत्र है ये राजस्थान की पृष्ठभूमि से है और यदि राजस्थान की बात करते हैं और केसरिया बालम की बात नहीं करें तो शायद ये हमारी एक कमी रह जाएगी इस कार्यक्रम में। इस गीत को दो बार फिल्मों में यानी कि आधुनिक फिल्मों में बताया गया, एक फिल्म आई थी डोर और उसके बाद एक आई थी नन्हे जैसलमेर, दोनों में ही इस गीत का प्रयोग हुआ और फिर वो किस प्रकार हुआ ये हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल एक डोर फिल्म का ये अंतिम गीत जिसमें सारंगी का प्रयोग भी आपको अच्छे से मिलेगा और राजस्थान की झलक भी। इस कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनते हैं।

सारंगी की इसी धुन से लेते हैं इस रूबरू कार्यक्रम से अब आपसे विदा। मैं थी अभी तक आपके साथ में डिम्पी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लेक सिटी FM बैंड 101.9 MHz पर। आपसे फिर अगले किसी कार्यक्रम में रूबरू होंगे। तब तक के लिए आइए जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं शेष कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: मुकेश की आवाज थी और फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना, ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का था। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना अनजान की और संगीत राजेश रोशन का।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: जयमाला कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजी। फिल्म का नाम है दो प्रेमी। शब्दकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
3: पायलिया छनकी के ना
4: छनकी छनकी

ऐसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: शिवहरी के संगीत निर्देशन में ये था जावेद अख्तर का लिखा दो गाना। अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम था सिलसिला।
1: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे।

0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज है, फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है।

इंद्रधनुष के तहत आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। अली सरदार जाफरी का कलाम, गायक स्वर जगजीत सिंह का।

तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम मौजूद थे। आँख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे रात के सीने में मेहताब की खंजर की तरह। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में अली सरदार जाफरी का ये कलाम। और आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली की आवाज़, कलाम अहमद वसी का, संगीत मधुरानी का है।

मेरी आंखों में ढूंढता क्या है, आंसुओं के सिवा अब बचा क्या है। छाया गांगुली की आवाज में अभी आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना।

भूपेन्द्र सिंह और मिताली सिंह को अभी आपने सुना कलाम इब्राहिम अश्क का था। और अब इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न हुआ।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका सफेदे के पेड़। लेखक हैं रेवती शरण शर्मा और निर्देशक दीनानाथ।
1: कौन?
2: मेन साहब मैं।
1: कौन? अब्दुल करीम, तुम चाय देकर नहीं आए?
2: हुजूर मेम साहब, मैं क्या करूं? साहब कहते हैं पहले उन्हें दे आओ, आप कहती हैं उन्हें दे आओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं।
1: तुम्हारी?
2: जी, मैंने साहब से कहा आप ही मान जाइए, और अगर नहीं मानते तो मैं डबल चाय ले आता हूँ, आप भी इधर ही पी लीजिएगा, लेकिन वो मानते ही नहीं।
1: क्या कहते हैं?
2: कहते हैं अब्दुल करीम, मैंने कल उनके साथ इतनी गुस्ताखी की कि आज किस मुंह से चाय पीने उनके पास जाऊं।
1: तुमने क्या कहा?
2: मैं क्या कहता हुजूर मेम साहब, जी में आया कि कह दूं मेम साहब इतनी छोटी तबीयत के नहीं है, पर हुजूर डर गया कि कहीं आप।
1: इसमें डरने की क्या बात, गलत फहमी में ऐसा हो ही जाता है। मेरे दिल में तो अब कोई बात नहीं, वो आना चाहे तो शौक से आ जाए, मैं ऐसी तो नहीं कि वो आए और मैं कोई बदअखलाकी बरतूं।
2: बस तो हुजूर, मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में था, मैं अभी जाकर कहता हूं।
1: लेकिन सुनो तो।
2: हुजूर अब तो आकर ही सुनूंगा।
1: ओफो।
2: साहब साहब जल्दी से तैयार हो जाइए।
3: लेकिन किस बात के लिए?
2: दावतनामा कबूल कर।
1: शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो जैसे ही अब्दुल करीम ने कहा कि साहब कहते हैं कल के वाक्य के बाद वे किस मुंह से चाय पीने मेरे कमरे में आए।
3: जी, अब्दुल करीम ने क्या कहा?
1: यही कि आप उसकी बात मानकर चाय पीने यहाँ आ जाते, लेकिन।
3: किसकी बात मानकर?
1: अब्दुल करीम की।
3: आप क्या कह रही हैं?
1: क्यों?
3: अब्दुल करीम ने तो मुझे ये कहा कि आपने ये हल निकाला है कि अगर दोनों चाय पहले पीना ना चाहें तो फिर दोनों साथ पी लें।
1: क्या?
3: जी हाँ।
1: यानी आपने खुद यहाँ आना नहीं चाहा?
3: कतई नहीं, मैं तो आपके बुलाने पर।
1: गलत, मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाती?
3: तो मैं क्यों आता भला?
1: मुझे क्या मालूम?
3: लेकिन मुझे मालूम है, मैं इतना जलील नहीं हूँ कि।
1: तो क्या मैं इतनी जलील हूँ कि अरे गैरों को?
3: देखिए, ऐसा मत कहिए आप।
1: तो आप भी मत कहिए।
3: मैं क्या कह रहा हूँ?
1: आपने कहा नहीं कि मैं इतना जलील नहीं, तो क्या मैं इतनी जलील हूँ?
3: नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा किया था।
1: तो क्या मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी? मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस बकबक और लड़ाई झगड़े से, इसलिए तो भागकर कश्मीर आई थी।
3: और मैं किस लिए आया था? आपको मालूम नहीं मेरी जिंदगी में कितनी तलखी है, लोगों की बेरुखी और नफरत से बचकर अमन चैन और खामोशी के कुछ सांस लेने यहां आया था, मगर मेरी बदनसीबी तो चार कदम आगे चलती है, अपनी खुशी क्या हासिल करता, दूसरों की खुशी का दुश्मन बन बैठा।
1: और क्या मैं इस इल्जाम से बरी हूं सतीश जी? मुझ में क्या औरत बन रह गया है? नौकरी करके, टीचरों से लड़ लड़ के, घर वालों की खुदगर्जी और बाहर वालों की नफरत देख देख कर मेरे अंदर भी क्या कुछ कोमल भावुक कविता और कल्पना से भरा रह गया है। सतीश जी, मैं खुद सूखी नदी बन के रह गई हूँ जिसके किनारे पर घास भी अपनी पत्ती खिलाना नहीं चाहती।
3: ऐसे ना कहिए, ऐसे ना कहिए संतोष जी, ये आपका दोष नहीं है, ये जिंदगी, ये दुनिया, इसके लोग ही ऐसे हैं, ये सब ऊपर से देखते हैं, दिल में झांक कर कोई नहीं देखता। लेकिन मैंने भी ये क्या बात शुरू कर दी, आपका अच्छा भला मूड खराब कर दिया।
1: नहीं नहीं, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
3: अच्छा, तो बाहर आइए ना, देखिए क्या सुनहरी धूप है।
1: अरे हाँ आइए। हाय, जरा गुलमर्ग को देखिए, कितना ओसीला, कितना हरा भरा और कितना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला लग रहा है।
3: अरे सच, कल दोपहर आए थे तो बड़ा बासी बासी सा लग रहा था, पर अब ओस में नहाकर घास कैसी जगमगा रही है।
1: और हरी भरी घास के ऊपर से ये देवदार के काले काले जंगल,

0: कंट्रास्ट है।
1: और उनसे ऊपर अल पत्थर की ये चोटी, देखिए तो बर्फ क्या शीशा सी चमक रही
0: है। हाय सचमुच क्या प्यारी चोटी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे चांदी की बनी हो।
1: चलिएगा।
0: कहाँ?
1: वहाँ।
0: इतनी दूर? मेरा दिल कमजोर है।
1: आइए तो, कहीं तो लौट जाएंगे। देखिए वो भी जा रहे हैं।
0: कौन?
1: वही दोनों।
0: वो मियां बीवी? कहाँ है
1: वो? देखिए जहाँ से जंगल शुरू होता है वो पोनियों पर।
0: हाँ हाँ देखिए कैसे जा रहे हैं,
1: हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के।
0: बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को।
1: हाँ।
0: उम्र की बात है, उम्र निकल जाती है तो सब कुछ निकल जाता है।
1: हाँ सब कुछ निकल जाता है, बस बुढ़ापा रह जाता है।
0: हाँ पर आप अपने आप को कैसे बूढ़ा समझने लगे?
1: क्यों? क्या मैं जवान लगता हूँ?
0: बिल्कुल।
1: आप अपने आईने में देख रही हैं।
0: क्यों, क्या मैं जवान लगती हूँ?
1: आप संतोष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसान जानता है पर ये नहीं जानता कि जवाब देने का उसे हक है कि नहीं। चलिए फिर दिल तेज हो जाएगी।
0: चलिए।

0: ओ सतीश जी, आपने क्या किस्सा सुनाया, मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया।
1: ये बताइए, आपके कॉलेज के किस्से से मजेदार है या नहीं?
0: बिल्कुल, और आपका अंदाज जान तो उसने डाली
1: जी।
0: बिल्कुल, तभी तो बातों बातों में लगाकर यहाँ तक ले आए। सच मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंची जा सकती हूँ।
1: कामयाबी तो तब समझूं जब आपको चोटी तक ले जाऊं, फिर अलपत्थर की वो नीली झीलें दिखाऊं।
0: ना बाबा ना, मैं वहां तक नहीं जा सकती, मैं तो बस यहाँ बैठूंगी।
1: हाँ हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, वहां बैठी उस चश्मे के करीब। कहते हैं इसका पानी शहद की तरह मीठा होता है।
2: मैंने कहा संतोष जी को क्या बता रहे हैं सतीश साहब।
1: अरे आप
0: आप यहाँ?
3: हम तो हैं, मगर आप लोग कब आए?
0: बस अभी अभी।
1: बात ये है चंद्र साहब, मैं आ रहा था और आप भी आ रही थी, मैंने कहा साथ चलते हैं, साथ हो जाएगा।
2: ये वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा, साथ वाकई बहुत अच्छा होता है।
3: गुलमर्ग से भी अच्छा होता है
0: जी।
3: मैंने अर्ज किया कि साथ गुलमर्ग से भी अच्छा होता है, साथ हो तो हर चीज गुलमर्ग हो सकती है, साथ ना हो तो गुलमर्ग भी गुलमर्ग नहीं। क्यों संतोष जी?
0: जी जी हाँ जी हाँ, बाहर आकर कंपनी जरूर चाहिए। आप देखिए ना, आपसे मुलाकात हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं अकेली आई हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम?
3: हम तो नीचे जा रहे हैं
0: अभी से।
2: हम काफी देर से आए हुए हैं और हमें लौटना भी है।
1: क्या आज ही लौट जाएंगे?
2: जी हाँ, कल हमें पहलगाम जाना है, आप ठहरिएगा।
1: जी हाँ, अभी कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन शायद एक रात और ठहरे।
3: और पहलगाम?
1: देखिए जाना तो है, मगर गुलमर्ग भी कुछ कम खूबसूरत नहीं।
3: जी हाँ, गुलमर्ग कम खूबसूरत नहीं है। अच्छा तो हमें इजाजत है?
0: अच्छा देखिए, पहलगाम में मुलाकात हो शायद।
3: बेहद खुशी होगी। नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: देखा आपने?
0: क्या?
1: हम पर छींटा कसा।
0: पर मुझे बुरा नहीं लगा।
1: क्यों?
0: मालूम नहीं क्यों, उल्टा बहुत अच्छा लगा। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद। गुलमर्ग, खिलनमर्ग, पहलगाम, सच सतीश जी आपने मिलते हैं तो ये सब कुछ मैं इतनी अच्छी तरह से ना देख पाती।
1: और मैं संतोष जी, मेरी जिंदगी के ये 15 दिन ऐसे कटे हैं कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपका साथ, आपका हर वक्त मेरा ख्याल रखना, हम लोगों का एक साथ घूमना, चाय पीना, खाना खाना, ओहो मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं।
0: आप तो शुक्रिया अदा कर देंगे, पर मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकूंगी। पहलगाम में तबीयत खराब होने पर जिस तरह 2 रातें आपने मेरे सिरहाने आंखों में काटी।
1: आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या ये इंसान का फर्ज नहीं होता?
0: फर्ज?
1: हाँ?
0: आप इस दुनिया में फर्ज की बात करते हैं सतीश जी? पिछले साल मुझे

0: 21 दिन तक टाइफाइड चढ़ा था। मेरी माँ, मेरे दो सगे भाई, मेरी दो सगी भावजी घर में थी। सब मेरे रुपयों पे पलते हैं, लेकिन रात मेरे पास कोई नहीं सोया। दवा और पानी का गिलास रखकर सब चले जाते हैं।
1: उनका जिक्र न कीजिए संतोष जी। माँ, बाप, भाई, बहन, कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सतीश जी। मैंने घर वालों की खुशी के लिए शादी नहीं की, लेकिन मेरी खुशी की कोई नहीं सोचता। कोई शादी की बात भी करता है तो मेरी माँ कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे शादी की हाय नहीं है।
1: बिल्कुल मेरी जैसी बात है। घर पर कोई भी आता है तो कह देते हैं, नहीं साहब, भाई साहब शादी नहीं करेंगे, उनसे बात चलाना बेकार है। गोया भाई साहब को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, भाई साहब तो पत्थर हैं।
0: ओह, मैं कितनी बुरी हूँ, ऐसी बात ले बैठी, आपको भी उदास कर दिया। आप चाय पिएंगे?
1: नहीं संतोष जी, आज अपने कमरे में ही चाय पीऊंगा।
0: क्यों?
1: इसलिए क्या आज आप चाय पिला देंगी, पर कल के बाद तो फिर खुद ही चाय बनाना और खुद ही पीना होगा।
0: कल जरूर जाएंगे?
1: जाना ही होगा संतोष जी, एक दिन तो लौट नहीं होगा।
0: कुछ दिन और नहीं ठहर सकते?
1: ठहर सकता हूँ, पर दो चार दिन ठहरने से क्या होगा।
0: दो चार दिन के लिए भूली रहूंगी कि दुनिया बुरी होती है, लोग खुदगर्ज होते हैं, कोई किसी के दर्द की दवा नहीं बनता।
1: ये आप क्या कह रही हैं संतोष जी, मुझे मालूम नहीं कि मुझे ये कहने का हक है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूं, अगर आपने मुझे अपने लिए कुछ करने का कभी भी मौका दिया तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
0: और मैं क्या, मैं इतनी बदनसीब हूं कि जिसने पहली मर्तबा मेरे दिल को यूं रखा, मैं उसे लेती ही रहूंगी, तकलीफ ही देती रहूंगी।
1: ये मेरे लिए तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जिंदगी में मैं पहली बार महसूस करूंगा कि किसी ने मुझे अपना समझा है।
0: और मैं क्या, मैं कभी किसी को महसूस न करा सकूंगी कि मैं भी किसी की हो सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ।
1: संतोष जी,
0: मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना।
1: ये क्या संतोष जी, ये क्या पागलपन है? संतोष, ये क्या पागलपन है?
0: मुझे रोने दो, मुझे अपने फूटे भाग पे रोने दो।
1: रो मत संतोष, रो मत। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे वो कह दूं जो आज तक मैंने ठुकराए जाने के डर से किसी से नहीं कहा, तो लो मैं कह देता हूं, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो।
0: तुम सच कह रहे हो?
1: हाँ संतोष, मुझे अपना लो, क्योंकि अपनी जिंदगी की सूनी सड़क पर गुलमर्ग के रास्ते में खड़े सफेदे के पेड़ों की तरह तना नहीं खड़ा रहा जाता। मुझे सहारा दो, अपना साथ दे दो।
0: मेरे सतीश, तब मेरा भी हाथ थाम लो, मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर जो बचा है उसे तो पा लेने दो।
1: मेरी

सफेदे के पेड़ अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। लेखक रेवती शरण शर्मा थे और निर्देशक दीनानाथ। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजी, फिल्म का नाम है विजय पथ। गीतकार हैं जमीर काजमी और संगीत अनु मलिक का।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी, फिल्म का नाम था विजय पथ। इस गीत को जमीर काजमी ने लिखा और धुन बनाई अनु मलिक ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे बाय।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।

0: नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
1: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
2: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
0: आई नो ना,
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
4: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: मोहित चौहान और उज्जैनी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु का गीत, राजशेखर के बोल और कृष्णा का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम संघर्ष, गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने

0: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी

0: रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी

0: उन्होंने तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया

0: जो गोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उपप्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Fencing work in the border areas of West Bengal.

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था शर्मिली। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत।

0: रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह आवाज़ है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो।

0: फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी,
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर, तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा जैसे आप कहें, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

दोस्तों 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

दोस्तों इस गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

0: बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा नहीं किया।
0: अच्छा। कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छुमंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आई, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
2: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, जिसे डस गई, जिसे डस गई।

0: एक बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया।

अत्तरी सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम दादरा।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहां कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

गाए हैं माशा अल्लाह बाकी अदाएं माशा अल्लाह माशा अल्लाह पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे और तुम

तुम्हारी सबसे आला ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला अपना तो हाल कुछ ना पूछो कैद हुआ है चाहने वाला जुल्फों के जाल में हम तेरे ख्याल में हम उलझे हैं अरमा हमारे हम बेचारे प्यार के मारे और तुम तो तुम हो बहरे बहरे तो डरते डरते

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है।
1: वो झरो कैसे

0: छाया गीत में दिल और दिमाग के सुरताल की ये महफिल जमी थी आपकी दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी रात्रि के 11 बजे है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार और फिर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DAN तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और

0: सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and